0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के

0: मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
3: The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
3: Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. The monsoon session of Parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal.

0: நிறைவு பெற்றது திரையிசை. தொடர்வது ஆஜ் சவேரி டெல்லி அஞ்சல்.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रहे हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। और आज के अंक में हम आपको देंगे हमेशा की तरह देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे आज, और जानी मानी शख्सियतों को हम याद करेंगे। मौसम का भी हाल जानेंगे आज, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार प्रमोद।
1: नमस्कार फरहत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 megahertz and the entire Akashwani network. We bring to you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we give in the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 5th of July.
0: जी, और आइए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं प्रमोद
1: जी
0: उड़ान योजना की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जिससे भारत के नागरिक उड्डयन अवसंरचना और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना की शुरुआत भारत की क्षेत्रीय संपर्क के अगले अध्याय की शुरुआत होगी। श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई यह योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती प्रदान करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना सच होगा।
1: That's right. The government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1,875 rupees per quintal to 2,125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts.
0: वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest.
0: वहीं 35 ट्रैक्टर और 6 यूटिलिटी गाड़ियां एग्री एक्सपो में सौंपी गई हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कल लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नागालैंड की लगभग 70% आबादी खेती से जुड़ी हुई है, जिससे कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है। उन्होंने कहा कि राज्य को उपजाऊ जमीन का वरदान मिला है। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाकर अपनी उत्पादकता बढ़ाने और अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए अपने खेतों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो बहुत ही एक अच्छी पहल है किसानों के लिए।
1: जी फरहत, एब्सोल्युटली। एंड एक और अच्छी खबर है गोवा से।

0: जो किचन वेस्ट है
1: जी जी,
0: उसको न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बनाया जा रहा है जस्ट इन टू डेज. या सो इमेजिन इफ यस्टरडेज किचन वेस्ट कुड बिकम न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट इन जस्ट टू डेज. गोवा इज नाउ एम्ब्रेसिंग एग्जैक्टली दैट आइडिया विद अ न्यू रैपिड कंपोस्टिंग इनिशिएटिव दैट प्रॉमिसेस क्लीनर विलेजेस, ग्रीनर टाउन्स एंड अ हेल्दियर एनवायरनमेंट.
2: Goa is set to transform the way biodegradable waste is managed. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has announced that Nisargarun rapid composting units will be introduced in phases across all municipalities and village panchayats. The initiative follows the successful installation of a composting unit at a material recovery facility in Bicholi. Using a specially developed microbial culture, segregated wet waste is converted into odor-free organic compost within just 24 to 48 hours. The technology reduces transportation costs, fuel consumption, methane emissions, and pollution by processing waste closer to where it is generated. The compost produced can be used in farming, horticulture, and home gardens, while recyclable dry waste remains clean and more valuable. Training programs like demonstrations and public awareness campaigns will support the initiative, paving the way for a cleaner, greener and more sustainable Goa. For Aaj Savere, Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
1: अब बात कर लेते हैं मॉनसून सत्र की. संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा.
0: In the FIFA World Cup, France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute after VAR awarded France a spot kick. फ्रांस विल नाउ फेस मोरक्को इन द क्वार्टर फाइनल्स. फरहत, आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है?
1: जी थोड़ा बहुत.
0: आपके हस्बैंड को होगा शायद.
1: जी जी बिल्कुल, वो दिन रात जो है फीफा ही लगा रह रहा है. लेकिन अब बात कर लेते हैं महिला टी20 विश्व कप की. आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से. दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं. ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है.
0: Farhad, we have a must announcement. As part of our series Prakriti Ki Baat Akashwani Ke Saath, we bring you a conversation with Devendra Sura, who's been working towards tree plantation and environmental conservation.
3: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई. अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम. तो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है. बड़ा गर्व महसूस करता हूँ. साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला. ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे.
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.
0: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today morning at 10:30 AM. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
1: और प्रमोद, आपको बता दें कि पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, जिससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में भी बाधा आ रही है. अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य और मध्य अटलांटिक तट पर लू की चेतावनी जारी की गई है. न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं. अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया कि उच्च आर्द्रता के स्तर से बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और विभाग ने आगे भी इसकी चेतावनी जारी रखी है.
0: जी बहुत डरावनी बात है ये, जब इतने टेम्परेचर इतने बढ़ते हैं.
1: यहाँ पर जब तापमान 42 डिग्री हो जाता है तब हम लोगों की हालत जो है बहुत खस्ता हो जाती है. तो ऐसे में वहाँ पर क्या हाल हो रहा होगा लोगों का, वो सोचने वाली बात है. और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरों का. तो प्रमोद, चेन्नई में सबसे पहले क्या है खास?
0: जी मेरे पास दो खबरें हैं चेन्नई से. अ टू डे इंडियन इंट्रालोक्यूटर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी कॉन्वेंशन 2026 बिगैन इन चेन्नई यस्टरडे. मोर देन 2,000 आई डॉक्टर्स, सर्जन्स, रिसर्चर्स एंड विजन एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर टेकिंग पार्ट. Organized by IIRSI, the event has over 250 speakers, 500

0: scientific sessions and 9 wet lab training programs. It focuses on the latest advances in cataract, refractive surgery, cornea, retina and myopia, along with live surgical demonstrations. Governor Arlekar said, India has become a global center for medical innovation, with Tamil Nadu playing a key role in healthcare and medical education. Moving on to the second story, Farhad, Chennai Mathematical Institute has signed an MOU with Think Math Foundation to offer certificate courses for school mathematics teachers. The initiative aims to help teachers use innovative teaching methods and improve students' math skills. CMI Director Madhavan Mukund said the institute also plans to develop a resource center at its new Siruseri campus to train more teachers in modern teaching practices. Farhad, this was the news from Chennai. What do you have for us from Delhi, Mumbai and Kolkata?
1: जी, सबसे पहले शुरुआत राजधानी दिल्ली से कर लेते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं, समय SIR का काम बहुत तेजी से चल रहा है. BLO आपके घर पर आ रहे हैं और फॉर्म दे रहे हैं. तो हम आपको ये भी बता दें कि अगर फॉर्म आपके पास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलतियां हो रही हैं फॉर्म में, और 2 फॉर्म आपको दिए गए हैं. 1 BLO को आपको वापस लौटाना होगा और 1 फॉर्म जो होगा वो आपके पास होगा, तो उसकी फोटो कॉपी करवा के जरूर रख लें, क्योंकि उसमें 3 कॉलम दिए गए हैं. अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम है तो उसमें अलग इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और अगर नहीं है तो आपको पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी होगी. तो इसीलिए फोटो कॉपी करवा के पहले आप वो भर लीजिए, क्योंकि
0: अच्छा
1: उसके बाद
0: फॉर्म.
1: जी बिल्कुल, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ. इसी वजह से मैं सजेशन दिया. तो इसमें जो है 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है. तो ये सब BLO के साथ हम यही कहना चाहेंगे, कोऑपरेट कीजिए और पूरी पूरी सही इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए. और पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म करने की मंजूरी दी है. इस निर्णय के अनुसार अब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अलग अलग समय को बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर दिया गया है. वहीं दिल्ली नगर निगम के लिए समय पहले ही जैसा है, जो सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा.
0: फरहत, मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, एंड वहाँ पे थोड़ा सा एक न्यूज है जो थोड़ा सा शॉकिंग है. चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बहुत बाढ़ है.
1: अच्छा.
0: बट कर्नाटका गवर्नमेंट इज डूइंग सम गुड स्टफ, उसके बारे में एक न्यूज है. कर्नाटका डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर हैज डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स टू स्पीड अप ड्राउट रिलीफ मेजर्स इन चित्रदुर्ग. ही सेड द स्टेट हैज अ रिलीफ फंड ऑफ 32,000 crore rupees एंड स्ट्रेस्ड द नीड टू प्रोवाइड फॉडर सीड किट्स, drinking water and quick electricity connections to new bore wells. He also instructed officials not to supply drinking water to sugar factories during the drought. Expressing concern over the lack of water for preparing midday meals in Hiriyur, he asked officials to hold weekly review meetings and ensure timely implementation of relief measures. Kitne dukh ki baat hai ki bachon ke midday meals ke liye tak bhi pani nahi hai wahan pe. लोगों ने बहुत ज्यादा पानी वेस्ट किया है.
1: बिल्कुल, ये तो हम हमेशा अपील करते हैं लोगों से कि पानी, एक एक बूंद जो है पानी की, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए बचाइए ताकि ऐसे समय में वो काम आ सके.
0: हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पानी है उनको उस चीज की अहमियत नहीं पता नहीं. हाँ, एग्जैक्टली.
1: और अब आइए मुंबई का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य के सहकारी बैंकों ने कई कॉरपोरेट बैंकों से बेहतर प्रदर्शन किया है. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कल मुंबई में आयोजित सहकार गौरव पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य में 2,00,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जो इसे देश का सबसे बड़ा सहकारी नेटवर्क बनाती हैं. वहीं महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भड़ाने ने किसानों से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि ये योजना प्राकृतिक आपदाओं, सूखे, बेमौसम बारिश और अन्य प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है.
0: मूविंग ऑन टू हैदराबाद, Union Minister for Coal and Mines G. Kishan Reddy has asked Singareni Collieries Company Limited, SCCL, to prepare a 10 to 15 year plan to meet South India's growing energy demands. During a review meeting at Singareni Bhavan yesterday, he urged the company to participate in commercial coal block auctions, improve efficiency, reduce production costs and explore coal gasification projects, starting with one in Ramagundam to support fertilizer industries.
1: और प्रमोद, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत की गई है. कोलकाता की हम बात कर रहे हैं. BSNL ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक भारत नेट परियोजना शुरू की है. मुख्य महाप्रबंधक गजाला फैसल ने बताया कि इस परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से

0: किफायती हाई स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। राज्य में लक्ष्य 3,340 ग्राम पंचायतों में से 2,600 से अधिक में काम पूरा हो चुका है, तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल
1: बहुत अच्छी पहल है।
0: तो श्रोताओं, महानगरों की खबरों की बात तो हमने कर ली, अब आइए मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो बारिश तो हो रही है लेकिन खुलकर बारिश नहीं हो रही है। तो आज लेकिन बारिश फिर से जो है महसूस की जाएगी, यानी मौसम विभाग ने आंधी के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। न्यूनतम तापमान में जो है गिरावट आ सकती है, 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान, वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की भावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी हल्की बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो प्रमोद, ये तो थे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल।
1: जी, मैं आपको ले जाऊंगा चेन्नई।
0: जी,
1: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 28 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius. फरत, ये मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि हर जगह गर्मी बढ़ रही है।
0: बहुत
1: अभी मैं केरला में था एंड वहाँ पे जो बारिश होनी चाहिए नॉर्मली वो नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है।
0: अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है। लोग कहते थे कि यहाँ पे हरियाली होती है तो वहाँ पे बारिश का जो दौर है वो ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार मेरा भी जो है बिहार की तरफ जाना हुआ तो वहाँ भी बारिश एकदम नहीं थी, एकदम गर्मी से बुरा हाल था।
1: Bengaluru's forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 20 degrees Celsius, while the maximum may reach 32 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 23 degrees Celsius to 29 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 5 जुलाई 2026, तो 1687 में क्या हुआ था आज के दिन?
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। आइजैक न्यूटन्स ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक ट्रीटीज फिलोसफिए नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, कॉमनली नोन एज द प्रिंसिपिया, वॉज पब्लिश्ड बाय द रॉयल सोसाइटी इन इंग्लैंड, फंडामेंटली ऑल्टरिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है।
0: अच्छा, तो ये मेरे तो मैथ्स के पेपर जब होता तब पेट में दर्द शुरू हो जाता था।
1: मेरे 99 आउट ऑफ 100 आए थे मैथ्स में।
0: जी, और अब आगे बढ़ते हैं, 1954 की बात कर लेते हैं। बीबीसी ने टेलीविजन इतिहास में पहली बार अपने दैनिक टीवी समाचार बुलेटिन का सीधा प्रसारण शुरू किया था।
1: वाओ, 1954 में ही, 1954, हाइलाइटिंग द डॉन ऑफ मॉडर्न रॉक एंड रोल म्यूजिक हिस्ट्री, एल्विस प्रेस्ली रिकॉर्डेड हिज लेजेंडरी फर्स्ट कमर्शियल हिट सिंगल दैट्स ऑल राइट एट सन रिकॉर्ड्स इन मेम्फिस टेनेसी। इट वॉज कॉल्ड दैट्स ऑल राइट।
0: 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने संविधान के 26वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया, जिसके तहत मतदान करने की कानूनी आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया।
1: On the 5th of July 1975, Arthur Ashe made global sports history by becoming the first black man to win the prestigious Wimbledon singles title, defeating Jimmy Connors.
0: 1994 में अमेरिकी व्यवसायी जेफ बेजोस ने वाशिंगटन के बेलव्यू में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में अमेज़न की स्थापना की, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना।
1: जी,
0: और अब आइए इतिहास में, तो हमने बात कर ली, कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं। तो आज जन्मदिन है भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का। इन्होंने बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता, और इससे पहले 2016 में ब्राजील में खेले गए रियो ओलंपिक में बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक भी हासिल किया।
1: And starting with the birth anniversaries or birthdays, today is the birthday of a famous Malayalam film actor, Mamu Koya. He was an Indian actor known for his work predominantly in Malayalam films. He mostly appeared in comic roles. His unique usage of the Kozhikode dialect and style marked his presence in the industry. बहुत amazing बात है, ये मोहम्मद कोया करके हमारे actor है, and he was working in a timber factory. And उस टिम्बर फैक्ट्री में एक डायरेक्टर गए अपना कुछ वुडन वर्क करवाने के लिए, तो जिस तरह से वो मामू को या बात कर रहे थे उनसे इंप्रेस होकर उन्होंने उनको अपने एक

0: और अब आइए याद कर लेते हैं प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक बीरेंद्रनाथ सरकार को। 30 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म क्राफ्ट नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी के बैनर तले बीएन सरकार ने प्रारंभ दो मुख्य फिल्मों का निर्माण किया। कला के क्षेत्र में बीएन सरकार के योगदान को देखते हुए उन्हें 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वो दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लिया। भारतीय सिनेमा के विकास में उनके जैसे महान व्यक्ति और मजबूत नींव डालने निर्माता का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: Today is also the birthday of Zayed Khan, who was born on the 5th of July 1980. He's an Indian former actor and producer who worked in Hindi films. He's the son of Bollywood actor Sanjay Khan. He's received a Filmfare Award nomination. After graduating in business management at the Montgomery College and Film Institute at the London Film Academy, he made his acting debut in 2003 in the film Chura Liya Hai Tumne. His other films include Shabd, Das, Rocky the Rebel, Yuvraj, Raj, Blue and Anjana Anjani. But I'm sure Farhat, आपने 2004 में मैं हूँ ना देखा होगा।
0: हाँ, बिल्कुल देखी थी। उसके गाने famous भी थे, उसके गाने भी काफी लोकप्रिय रहे।
1: Exactly. तो उसी का एक गाना सुन लेते हैं।
0: जी।

0: और श्रोताओं आज हम बात कर लेते हैं भारतीय तैराक सचिन नाग की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। नई दिल्ली में 1951 के पहले एशियाई खेलों में सचिन नाग ने जब तैराकी में 100 मीटर फ्रीस्टाइल का स्वर्ण पदक जीता तो खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके गले में स्वर्ण हार डाला था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एशियाई खेलों में किसी भारतीय तैराक को इसके बाद आज तक स्वर्ण पदक हासिल करने का गौरव हासिल नहीं हुआ।
1: जी, टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजा लाला दीनदयाल, हु वाज बोर्न इन 1844 एंड डाइड ऑन द 5th of July 1905। ही वाज फेमसली नोन एज राजा दीनदयाल। हिज करियर बिगैन इन द मिड 1870s एज अ कमीशन्ड फोटोग्राफर। इवेंचुअली ही सेट अप स्टूडियोज इन इंदौर, मुंबई एंड हैदराबाद। ही बिकेम द कोर्ट फोटोग्राफर टू द 6th निज़ाम ऑफ हैदराबाद, महबूब अली खां, आसिफ जाह the 6th, who awarded him the title Raja Bahadur Musawwar Jung Bahadur, and was appointed as the photographer to the Viceroy of India in 1885. The Lala Deendayal Studios collection of 2,857 glass plate negatives was brought by the Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi, इन 1989। फरत, मैं भी एक फोटोग्राफर हूँ, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है राजा दीनदयाल के जो पुराने पोर्ट्रेट्स हैं 1800s के, 1890s के, दे आर सो अमेजिंग। एंड दिस एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड आई हैड गॉन टू सी इट, मैं देखने गया था। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड 1875 में आप सोचो उस समय के पिक्चर्स। Today, it is the largest repository of his work. A large collection of his work, including celebrated images of the 1870s famine, are with the Peabody Azox Museum in the US.
0: और आज जाने माने पार्श्व गायक जावेद अली का भी जन्मदिन है। युवाओं में इनका काफी क्रेज

0: देखने को मिलता है। उनकी आवाज सूफी गानों के लिए हो या फिर रोमांटिक गाने या फिर क्लासिकल, सभी तरह के गानों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे भी उनके बहुत सारे गाने बहुत पसंद हैं। इसके अलावा जोधा अकबर का एक गाना था जश्न-ए-बहारा, ये मुझे काफी, जी बिल्कुल, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: और श्रोताओं, आज हिंदी के जाने माने रचनाकार असगर वजाहत का भी जन्मदिन है। इन्होंने नाटक, कथा, उपन्यास, यात्रा, वृतांत और अनुवाद के क्षेत्र में अनेक रचनाएं की। ये दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कई टेलीविजन फिल्म लेखन और निर्देशन भी किया, जिसमें वृत्तचित्रें भी शामिल थीं। और इनका एक नाटक काफी लोकप्रिय रहा, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं।
1: उन्होंने लिखा था वो?
0: जी, इन्होंने लिखा था और इस पर कई सारे जो है नाटक वो किए गए हैं।
1: हाँ हाँ, मैंने इनका प्ले तो देखा है श्रीराम सेंटर में, बट आई डिडंट नो कि इन्होंने लिखा था।
0: जी जी, इन्होंने ही लिखा था। और इसके अलावा भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह का आज जो है उन्होंने अलविदा कहा था। शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ और आधुनिक बिहार के निर्माता ये रहे। इन्होंने बिहार विभूति के रूप में जाना जाता है और स्वाधीनता आंदोलन के योद्धा भी थे। स्वाधीनता के बाद राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण के कार्यों में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। अनुग्रह बाबू ने महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तो था आज के कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों के बारे में जानकारी। तो इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। लेकिन अगर आज के इस कार्यक्रम को आप किसी वजह से नहीं सुन पाए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को दोबारा सुन सकते हैं। www.newsonair.gov.in, यह है हमारी वेबसाइट।

0: वेबसाइट, तो जरूर से लॉग इन करें और जितने भी कार्यक्रम आकाशवाणी के हैं वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं।
1: That's right. Stay tuned for coming up next, समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाई मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण

0: विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। तो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मैं

0: यह कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनी

चीन ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत, भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का प्रतीक।

0: தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840

0: करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Vikasit Udan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: Prime Minister also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की प्रशंसा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देशों और अमेरिका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप, बिजली आपूर्ति प्रभावित। और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो

0: के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में जकार्ता में इंडिया क्लब के अध्यक्ष सिद्धार्थ टपाड़िया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे।
1: पूरे इंडोनेशिया में न केवल जकार्ता में एक उत्साह की लहर दौड़ रही है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं इंडोनेशिया, तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। 200 वॉलंटियर हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न कम्युनिटी से आ रहे हैं अपना कल्चर डाइवर्सिटी दिखाने के लिए। इसके अलावा जकार्ता से बाहर से बहुत सारे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, चाहे वो मेडान हो, बाली हो, सुराबाया हो या समारांग हो।
0: इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्व पूर्ण है और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देश और अमरीका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 जुलाई तक की इस यात्रा में डॉक्टर जयशंकर विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खमेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार कल से तेहरान में शुरू हो गए। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसाला में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों में राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर दलीबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। बिहार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेडिटा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। 9 जुलाई को पवित्र शहर मशहद में दफनाए जाने से पहले अगले कुछ दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी रहेगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा है कि देश में भूकंप से मृतकों की संख्या 2954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हैं। लगभग 16,000 लोग बेघर हुए हैं। देश में एक सदी से भी अधिक समय में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद बचाव अभियान अब भी जारी है। इस बीच वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के शोक की घोषणा करते हुए कहा कि विनाशकारी भूकंप से हुई जान माल की हानि से पूरा देश सदमे में है। वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिससे राजधानी कराकस में कई इमारतें ढह गईं

भूकंप के झटके वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू का प्रकोप जारी है, इससे बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण फीफा फुटबॉल विश्व कप मैचों

0: भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। अमरीकी मौसम विभाग ने कहा है कि बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, फिलाडेल्फिया में 44 डिग्री और वॉशिंगटन में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा। सरकारी मौसम एजेंसी के अनुसार जून में औसत तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण लू से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से 24 और 25 जून अब तक के सबसे गर्म दिन रहे। इस पहली बार फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। माली की सेना ने कहा है कि विद्रोहियों ने उत्तरी इलाकों के गांव और सिवारी कस्बों को निशाना बनाया है। एक विद्रोही गुट के उत्तरी इलाके के एक कस्बे पर कब्जा करने के लिए नए हमले का ऐलान करने के बाद ये बयान आया है। आजाद लिबरेशन फ्रंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि अलगाववादी एनिफिस कस्बे को निशाना बना रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में पैराग्वे को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले टेक्सास में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 की शानदार जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्रिकेट की बात करें तो मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर ही 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अब बात टेनिस की। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना राय बकीना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वेटेक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में रूस के रोमन सफियोलिन से मुकाबला होगा। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के सेनर का सामना जापान के शिंतारो मुजुकचुकी से होगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 4 खाड़ी देशों और अमरीका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, बिजली आपूर्ति प्रभावित और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முனீஷ் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से

0: 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme, Viksit Udan, in Jodhpur, Rajasthan yesterday, to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh and Padma Vibhushan awardee Tijan Bai has passed away. She had been suffering from a prolonged illness and was undergoing treatment at AIIMS Raipur. She breathed her last at around 3:15 a.m. today. With her powerful voice, compelling stage presence and distinctive style of narration, Tijan Bai gave Pandwani a new identity not only across India but also internationally. Her remarkable ability to bring

ఆట విడుపు పిల్లల కార్యక్రమం విన్నాం.

0: நிறைவு பெற்றது மெல்லிசை. தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அன்று.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முனீஷ் ஷர்மா. सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है. ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है. केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की. उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया. भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्ची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे. ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है. विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है. 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र

0: वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material seen in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to CSEM. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. Earlier, the ministry had taken cognizance of reports that Instagram showcased certain objectionable material that promoted child sexual abuse and issued directions to officials to seek a response from Meta. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today sanctioned and released assistance of 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan said, under this act, over 7.5 lakh crore rupees will be invested in 2.86 lakh panchayats in the next 5 years to accelerate the vision of Viksit Bharat. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jayashankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia beginning tomorrow will give impetus to the existing relationship between both the countries and will also open up new areas of cooperation. In an interview to Akashvani in Jakarta today, Mr. Sandeepan Chakravarti, Indian ambassador to Indonesia, said that during Mr. Modi's visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month, there will be several new areas of cooperation that will open up between the two countries. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh and Padma Vibhushan awardee Tijan Bai passed away.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, 2,86,000

0: पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में

0: भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस

0: इसलिए। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: दिन दिन वो मर ढालते हैं जैसे पानी में घूरा ढेला।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसी

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ஆகாஷ்வாணி, நேரம் 2:30.

0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तकनपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं जिनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए डेटा आधारित स्केलेबल प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों में अग्रणी भूमिका निभाती रहेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती पर श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अनुसंधान सहायक एक पद उपलब्ध है। मुख्य विषय के तौर पर मौसम विज्ञान या समतुल्य विषय के साथ मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भौतिकी अथवा अनुप्रयुक्त भौतिकी में पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए अथवा कम से कम 3 वर्ष का शोध अनुभव होना चाहिए। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.shar.gov.in अथवा apps.shar.gov.in। आवेदन किए जा सकते हैं 17 जुलाई 2026 तक। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना अधिकारी एक पद तथा सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी एक पद। पदों के संबंध में विवरण इस वेबसाइट पर उपलब्ध है www.dpl.gov.in। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पूसा नई दिल्ली में रिसर्च एसोसिएट का एक पद उपलब्ध है और इसके लिए विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.niap.res.in। मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। लाइब्रेरियन सह सूचना अधिकारी एक पद, वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक एक पद। पदों की विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि का विवरण उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.idsa.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल 8 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण, सामान्य शर्तें आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iiscrmohali.ac.in। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। उपनिदेशक चिकित्सा रिक्तियां हैं 2, कनिष्ठ प्रोग्रामर रिक्ति है 1, कनिष्ठ लेखाकार रिक्तियां हैं 4, आशुलिपिक 7 रिक्तियां उपलब्ध हैं और कनिष्ठ सहायक पद के लिए 39 रिक्तियां उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पंजीकरण, अंतिम तिथि, पात्रता, आरक्षण, पाठ्यक्रम और अन्य नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट natboard.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे

0: सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज विद शगुन चोपड़ा एंड करिश्मा राय टुडे।
0: श्रोताओं, क्लास 12 के नतीजे आए हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में देश भर के लाखों छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने, काउंसलिंग सेशन में शामिल होने और अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की योजना बनाने में व्यस्त होंगे।
1: बट करिश्मा, फॉर मेनी फैमिलीज सिक्योरिंग एडमिशन इज ओनली हाफ द जर्नी। द बिगर चैलेंज इज अरेंजिंग द मनी टू पे फॉर इट। So listeners, what if there was one digital platform where you could apply for an education loan from the comfort of your home? Well, that's exactly what the PM Vidya Lakshmi scheme aims to make possible.
0: PM Vidya Lakshmi योजना भारत सरकार की एक पहल है जो कई बैंकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाती है ताकि छात्रों को एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक ना जाना पड़े। योग्य छात्र अपने परिवार की आय और अन्य शर्तों के आधार पर सरकार से ब्याज में मदद भी पा सकते हैं।
1: And this scheme is available for students admitted to eligible quality higher education institutions. And the process is actually very simple. First, you need to register on the PM Vidya Lakshmi portal using your basic details. Second one, filling one common education loan application form with information about yourself, your course, college fees and the required documents.
0: और इसके बाद तीसरे नंबर पे है, छात्रों को अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे सही बैंक चुनना होगा और अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। और नंबर चार, फिर बैंक आपके आवेदन की समीक्षा करता है, आपके दस्तावेजों की जांच करता है और सीधे पोर्टल पर स्टेटस अपडेट करता है। और आखिरी चरण में अगर आपका लोन मंजूर हो जाता है तो आपको मंजूरी की जानकारी मिलेगी और बैंक की प्रक्रिया के अनुसार लोन की रकम जारी कर दी जाएगी।
1: एंड वी आर डन। सो स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन आर नोटिफाइड आफ्टर लोन सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट टू क्लेम द बेनिफिट। And to know more or apply, kindly visit PM Vidya Lakshmi portal. And for complete scheme guidelines, review the official Invest India PM Vidya Lakshmi PDF or explore the PM Vidya Lakshmi FAQs for more specific details. So listeners, as we have told you before, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India Now. Reports and capsules, tributes, there is so much more that we will be unfolding over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first, shall we?
0: बिल्कुल।
1: गवर्नमेंट विथड्रॉज इमरजेंसी कर्ब्स ऑन नेचुरल गैस सप्लाईज फॉलोइंग रिजम्पशन ऑफ एलएनजी शिपमेंट्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की।
1: Center orders Meta to remove child abuse ads from Instagram, seeks reply in 7 days.
0: छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया।
1: IMD issues red alert for very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today.
0: और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला।
1: Now we may proceed. This is our segment Dateline India. Well, we will talk about My Bharat or Mera Yuva Bharat initiative. Well, every young person dreams of making a difference. Some want to help their community, others to gain experience. And also, there are many who aspire to become better leaders. But the biggest challenge has always been knowing where to begin. Well, India now has an answer for it. It's called My Bharat or Mera Yuva Bharat, a platform where Digital India empowers Young India.
0: तो श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि लाखों युवाओं को सार्थक मौका कैसे मिला जाए और इससे कैसे जोड़ा जाए। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी ऊर्जा बर्बाद ना हो, और इसका जवाब है माई भारत पहल, जैसा कि शगुन ने अभी बताया।
1: So it was launched in October 2023 under the Ministry of Youth Affairs and Sports. And My Bharat is much more than a website or an app. Well, think of it as India's digital playground for young minds, a place where learning, volunteering, leadership and career opportunities, they all come together.
0: तो हो सकता है कि आपने लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पेड़ लगाते, बाढ़

0: समय मदद करते या फिर आस पड़ोस में सफाई अभियान में शामिल होते हुए देखा हो और सोचा हो कि काश मैं भी ऐसी ही किसी चीज़ का हिस्सा बन पाता, तो माई भारत ठीक यही मुमकिन बनाता है।
1: And Karishma, today the platform offers over 1.5 lakh volunteering opportunities across the country. And well, the best part is that everything is digital, from registration to attendance to geotagging, certificates and impact tracking, and no paperwork. Absolutely no paperwork at all, no running from one office to the other.
0: बिल्कुल, लेकिन volunteering कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। मान लीजिए कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि क्लासरूम में सीखना ज़रूरी है, लेकिन एम्प्लॉयर अक्सर प्रैक्टिकल अनुभव मांगते हैं और ये अनुभव आपको कहाँ से मिलेगा, यह भी आपको माय भारत फिर से यहाँ पर काम आएगा, जहाँ से आप अनुभव ले सकते हैं।
1: And the platform offers more than 24,000 experiential learning programs along with internships, apprenticeships and industry exposure.
0: तो अब युवा, आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके असल जिंदगी के स्किल सीखकर और अपने रिज्यूमे बनाकर अपनी गर्मियां बिता सकते हैं। कमाल की बात है ना शगुन?
1: Well, right. If we speak of resumes, that's actually learning beyond textbooks. And well, how many of us have stared at a blank screen wondering what should I even write in my CV, what should I even begin with, right?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: Everyone has faced that.
0: जी।
1: Dilemma.
0: और माय भारत युवाओं को आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की तैयारी करने में मदद करने के लिए AI powered resume builder, mentoring support और career guidance जैसी सुविधाएं भी देता है।
1: And if we are being very honest, most people hear words like constitution or public policy and they immediately imagine long, boring lectures. But what if learning about these topics felt more like participating than memorizing? And that's exactly what My Bharat offers. And My Bharat offers this particular things and these initiatives like the Viksit Bharat Youth Parliament and engaging digital quizzes. Young Indians, they don't just learn about democracy. Well, Karishma, they experience it.
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही श्रोताओं, जरा सोचिए कि आप एक पोडियम के पीछे खड़े हैं और भारत के भविष्य के लिए अपने विचार पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा सिर्फ नेता ही करते हैं? खैर, अब ऐसा नहीं है। और क्या आपको पहली बार वोट देने का अनुभव याद है? वह उत्साह, वो उंगली पर लगी पहली बार स्याही और उसकी फोटो खींचना आजकल तो नया ही ट्रेंड है।
1: राइट, एंड दैट सुप्रीम फीलिंग दैट आवर वोट मैटर्स टू। And through the My Bharat, My Vote campaign, lakhs of first-time voters, they are actually learning about the constitution, democracy and informed voting. How great is that?
0: और इसके साथ ही शगुन, क्या आपको लगता है कि आपको हाल ही में जो हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो तो याद ही होगा। पूरे भारत में लाखों लोगों ने अपनी योग मैट बिछाई और साथ मिलकर सेहत और तंदुरुस्ती का जश्न मनाया। लेकिन इतने बड़े स्तर के आयोजन अपने आप नहीं होते हैं।
1: Right, and behind many of them were My Bharat volunteers coordinating, organizing and encouraging community participation. And this same platform also supports the Nasha Mukt Bharat campaign, cleanliness drives, padyatras and countless community initiatives where ordinary young people, they create extraordinary impact.
2: Or is India's youth today dream big and move fast? To transform this energy into purpose, the Government of India launched Mera Yuva Bharat or My Bharat on Rashtriya Ekta Divas in October 2023. My Bharat is a national movement providing tools and opportunities for young people to contribute through volunteering, skilling and leadership, turning ideas into impact. In 2 years, it has grown into India's largest youth engagement platform. Over 2 crore young Indians and 1.2 lakh organizations have joined, creating 14.5 lakh volunteering opportunities through 16,000 youth clubs and 60,000 institutions. The My Bharat mobile app, launched in 2025, makes participation easier with AI-based guidance, voice assist, smart CV builders and digital certificates. My Bharat 2.0 will enhance this with mentorship, entrepreneurship support and integration with Skill India, Digital India and Fit India.
0: तो भारत के युवा न सिर्फ देश के भीतर बदलाव ला रहे हैं, बल्कि वे ग्लोबल मंचों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माय भारत के जरिए युवा नेताओं ने यूनाइटेड नेशन ECO SOC यूथ फोरम 2026 में हिस्सा लिया और दुनिया के साथ भारत के विचार साझा किए।
1: एंड अदर्स ट्रैवल टू इंडियाज बॉर्डर विलेजेस अंडर द विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक्सपीरियंसिंग लाइफ

0: in some of the country's most remote regions and strengthening the spirit of national integration.
1: बिल्कुल सही. और असल में जब तक आप अपने आसपास के माहौल से बाहर निकलकर लोगों की जिंदगी और कहानियों को नहीं जानते, तब तक आप अपने देश को सच में नहीं जान पाते.
0: I would like to add there that the map of India isn't just meant to be seen, it's actually meant to be experienced. And an amazing fact for our listeners that last month My Bharat earned a Guinness World Record for the highest number of users taking an online quiz within 1 week, and that is close to 4 lakh verified participants. 4 lakh.
1: वाओ. और शगुन, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भारत के युवा कितने उत्साह के साथ डिजिटल भागीदारी को अपना रहे हैं. भारत में अनगिनत भाषाएं और संस्कृतियां हैं और माय भारत इसी विविधता का जश्न मनाता है. यह ऐप भारत की 22 भाषाओं में उपलब्ध है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं. मौके बस कुछ ही टैप से दूरी है.
0: And perhaps the most exciting part is the fact that My Bharat 2.0 is bringing artificial intelligence, multilingual technologies, open APIs and digital credentials together to create an even smarter platform. Now picture India a few years ago from now, over 100 million young Indians connected through one platform, learning, volunteering, leading and creating impact.
1: तो श्रोताओं, माय भारत का विजन ठीक यही है, युवाओं के लिए देश का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना. एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां युवा सिर्फ बदलाव की बातें नहीं करते बल्कि असल में उसका नेतृत्व करते हैं.
0: Absolutely, Karishma. A nation where technology isn't just about scrolling through feeds or ordering groceries, but also about learning, volunteering, innovating and together building a stronger and bold India.
1: और श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. और शगुन, सबसे पहले बात कहाँ की करेंगे?
0: Well, we will be heading to Leh. So, Karishma and our listeners, imagine driving through one of the world's most pristine landscapes, only to leave scars that could last for decades. So, to safeguard its unique and fragile ecosystem, Ladakh has launched a new environment protection force with ex-servicemen at its core. We'll gather more details from our correspondent.
2: For the first time in the history of Ladakh, army veterans have joined the civil administration to safeguard the ecological sensitive areas. Union Territory Administration has deployed 100 ex-servicemen in the Environment Protection Force with responsibility of checking incident of illegal off-road driving in ecological sensitive areas, protected wildlife areas and preserve pristine environment. They have been authorized to issue on-the-spot challan for any environmental violation within their designated areas. Environment Protection Force is set up to prevent wildlife violation inside the protected wildlife areas and harmful environment activities to strengthen the strict implementation of Solid Waste Management Rules 2026. Lieutenant Governor of Ladakh V.K. Saxena administered the oath to the newly appointed member of the Environment Protection Force yesterday. Environment Protection Force is a new initiative of UT Ladakh to curb the menace of wildlife environment violation. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
1: और इसके साथ ही अब चलते हैं बिहार. बिहार में एक कानून बन जाना ही काफी नहीं होता. असली बदलाव तब आता है जब उन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाए. इसी दिशा में बिहार ने 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की बड़ी पहल की है. एक रिपोर्ट.
3: बोधगया के कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया. इस सम्मेलन में राज्य भर के 250 से अधिक न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए. यह सम्मेलन बिहार जुडिशियल एकेडमी और बिपार्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया. नए आपराधिक कानूनों की बारीकियों को समझना और पुलिस व न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है. उद्घाटन सत्र में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय और अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता और मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए नए और कड़े प्रावधान किए गए हैं। दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें जीरो एफआईआर, ईएफआईआर और जांच में फॉरेंसिक

0: साक्ष्य को अनिवार्य बनाए जैसे नियम शामिल हैं। वहीं तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता देना व उनकी सुरक्षा के नियम जोड़े गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
1: Well, let's talk about Goa. Goa is expanding entrepreneurship beyond cities. While rural communities are being trained in homestay tourism, Airbnb hosting and waste management, educational institutions are receiving support to transform student ideas into successful startups. More from our correspondent.
2: Goa is taking significant steps to promote entrepreneurship from villages to educational institutions. Chief Minister Dr. Pramod Sawant, along with Tourism Minister Rohan Khamte, felicitated participants of the Rural Accelerator Program 2026 at Kala Academy in Panji. Supported by Airbnb and implemented by the Forum for Integrated Development and Research in collaboration with Goa Livelihood Forum, the program equipped participants with practical skills in homestay tourism and waste management, creating new livelihood opportunities in rural Goa. The state government has also sanctioned grants to four educational institutions to establish startup incubation centers: Goa Engineering College, Government College at Kepe, Sri Damodar Srinivas Sinai Dempo College and Parvati Bai Chowgule College will nurture innovation and guide aspiring entrepreneurs. Aligned with Startup India Mission and the Viksit Bharat 2047 vision, these initiatives aim to transform ideas into enterprises and strengthen Goa's innovative ecosystem. For Parikrama, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
1: Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 80th edition of the Fit India Sundays on Cycle initiative in New Delhi. The event was organized in collaboration with the Sri Satya Sai Seva organizations to mark the 100th birth anniversary of spiritual leader Sri Satya Sai Baba. More than 9,000 people took part in the community run and cycle ride. Besides participating in Zumba and yoga sessions, the initiative aims to promote behavioral change and encourage a more physically active lifestyle. And this counters both. Speaking to the media, Dr. Mandaviya said cycling helps keep the heart, body and mind healthy, highlighting its health benefits. The minister also described cycling as a solution to pollution and traffic congestion in cities. He urged people to spend at least 1 hour away from mobile screens every day and devote that time to physical activity and sports for better health.
3: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है। आज देश में 4 में से 1 नागरिक ओवरवेटेज है, क्यों न हम प्रधानमंत्री जी की ओबेसिटी खिलाफ मूवमेंट के साथ जुड़ के अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है।
4: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया।
1: And in the FIFA World Cup, France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16. At Philadelphia, captain Kylian Mbappe scored the only goal for the match from the penalty spot in the 70th minute after video assistant referee awarded France a spot kick. France will now face Morocco in the quarterfinals.
4: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों के जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: आज हम बुधू खान को याद कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र में नासिक के निवासी थे। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और अंग्रेजों पर आक्रमण करने तथा विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज हम तारादास मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे बंगाल में नादिया के निवासी थे। 1930 को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई।
6: जेल में तारादास को कठोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इससे तंग होकर तारादास ने 5 जुलाई 1933 को आत्महत्या कर ली। धरती माँ के इस महान सपूत

0: राधादास मुखर्जी को हमारा शत शत नमन।
1: आज हम दुर्गा मल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे ब्रिटिश भारत सेना के गोरखा राइफल्स में हवलदार थे। बाद में वे 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्हें गोरखा विशेष टुकड़ी का कैप्टन बनाया गया।

0: गोपनीय मिशन के दौरान दुर्गा मल ने भारत बर्मा सीमा से असम में प्रवेश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में 5 जुलाई 1944 को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के जिला कारागार में उन्हें फांसी दे दी गई। अमर बलिदानी दुर्गा मल को हमारा शत शत नमन।
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने आज रायपुर के एम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद 70 वर्ष की आयु में अंतिम सांसें ली। तीजन बाई को उनकी जो कहानियां हैं, महाभारत की कहानियों पर आधारित पंडवानी गायन शैली को वैश्विक स्तर पे पहुंचाने का श्रेय जाता है। तीजन बाई को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गानियारी गांव में हुआ था। उन्होंने अपने नाना ब्रजलाल पारधी से पंडवानी की प्रेरणा ली और बचपन से ही महाभारत के पात्रों को अपनी आवाज और अभिनय के माध्यम से मंच पर जीवंत करना शुरू कर दिया था।

0: खबर नहीं पहुंची।
1: हाँ।
0: राजा दुर्धानी अपन भवन में बैठे रहे, देख के चारों तरफ सेना मल्ला कहे कि सब तो सही में आ गए हैं, पर एक रूपति द्वारका नाथ ले खबर दे गए नहीं।
1: हाँ।
0: तो आप एक काम करो, आज ही निकल जाओ।
1: हाँ।
0: और न्योता दे के बलराम कृष्ण ले आ जाओ।
1: हाँ।
0: तो राजा दुर्धन चल चल कर घोड़ा ले सजावे, घोड़ा रथ में बैठ कर बेग रथ दौड़ाते हुए द्वारका में जा पहुंचे तो सही।
2: Well, with her powerful voice, compelling stage presence and distinctive style of narration, Teejanbai gave Pandavani a new identity not only across India but also internationally.
3: तो तीजनबाई का जो गायन था वो वेदमती शैली यानी कि बैठ के गाने की परंपरा और कापालिक शैली यानी कि खड़े होकर अभिनय और गायन के साथ का अद्भुत मिश्रण रहा, और यही वजह है कि भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन उन्होंने किया और भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित किया।
2: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग हैरी लिंक, सॉन्ग राइटर एंड एक्टर. He wrote and co-wrote several well-known jazz standards. The song that we chose is These Foolish Things.

और इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के निर्माता और न्यू थिएटर्स के संस्थापक बीएन सरकार को आज हम याद कर रहे हैं। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आगे चलकर भारतीय फिल्म उद्योग को नई दिशा देने का फैसला किया। वर्ष 1931 में उन्होंने कोलकाता में न्यू थिएटर्स की स्थापना की। यह स्टूडियो भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर का प्रतीक बना और यहां देवदास, चंडीदास, मुक्ति, विद्यापति तथा भाग्य चक्र जैसी अनेक कालजयी फिल्मों का निर्माण हुआ। न्यू थिएटर्स ने भारतीय फिल्मों में तकनीकी नवाचार, उच्च गुणवत्ता और पार्श्व गायन यानी कि प्लेबैक सिंगिंग जैसी परंपराओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: तो बीएन सरकार ने अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों, निर्देशकों और संगीतकारों को मंच प्रदान किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 1970 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा वर्ष 1972 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग जेमी रॉयल रॉबी रॉबर्टसन एंड द म्यूजिशियन, कंपोजर एंड प्रोड्यूसर। रॉबर्टसन वॉज द वन टाइम लीड गिटारिस्ट फॉर बॉब डिलन्स बैकिंग बैंड। ही वॉज ऑल्सो गिटारिस्ट एंड प्राइमरी सॉन्ग राइटर ऑफ द बैंड फ्रॉम इट्स इंसेप्शन अंटिल इट्स हिज 1976 डिपार्चर।

0: और इसके साथ ही आज भारतीय बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्मदिन है। सिंधु ने कम उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया और प्रसिद्ध कोच पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में अपने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और इसके साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 2019 में पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था और देश के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है।
1: टुडे इट्स अ बर्थडे, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट सिंधु हैज वन मेडल्स एट टूर्नामेंट्स एंड सो मेनी टूर्नामेंट्स, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एंड ऑन द वर्ल्ड टूर। शी इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बिकम द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन एंड ओनली द सेकंड इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया टू विन टू कंसेक्यूटिव मेडल्स एट द ओलंपिक गेम्स। अ वेरी हैप्पी बर्थडे to her. Today, we're also remembering a trumpet-playing band leader, musician, and who led a big band to great commercial success from 1939 to 1946. I am talking about Harry James. Well, he broke up with his band for a short period in 1947, but shortly after he reorganized, he was active again. He was especially known among musicians for his technical proficiency as well as his tone.

0: தொடர்வது இந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है. केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की. उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया. सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है. सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं. यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है. इस बीच पेट्रोलियम

0: निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचावकर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नेरम 6:05।
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: இனி நிகழ்ச்சி நிரல். இன்றும் நாளையும் இடம்பெறும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு. இன்று மாலை 6:10 விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல், 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா, 7:10 கனிந்த வாழ்வு. ஓய்வு பெற்ற வணிக வரி ஆய்வாளர் எஸ் பொன்னுதுரை அவர்களுடன் நேர்முகம். 7:05 செய்தி கதம்பம், 8:10 திரைகானம், 9:15 ஸ்பாட்லைட் டெல்லி அஞ்சல், 9:30 அகில பாரத சித்திரம் ஹிந்தியில், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ் டெல்லி அஞ்சல், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:10 திரைகானம். நூறு புள்ளி 1 FM கோல்டின் நள்ளிரவுக்கு பின் 12:10 இரவின் மடியில், 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனிய ராகம் உஸ்தாத் அல்லா ரகா மற்றும் உஸ்தாத் ஜாகிர் உசைன் ஆகியோரின் தப்லா இசை, அதிகாலை 4:10 பொங்குமங்கலம் காரக்குறிச்சி பி அருணாச்சலம் குழுவினரின் நாகேஸ்வர இசை, 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனிசை, 7:25 திரை இசை, 7:30 ஹாட் சவேரே, 8:30 திரைகானம், 9 மணிக்கு அரங்கிசை எஸ் மகதி அவர்களின் பாட்டு, எம் ஏ கிருஷ்ணசுவாமி அவர்கள் வயலின், எஸ் ஜே அர்ஜுன் கணேஷ் அவர்கள் மிருதங்கம்,

0: தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम में हम भारत के सहकारी क्षेत्र में आ रहे परिवर्तन का विश्लेषण करेंगे। श्रोताओं, देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों का समापन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के साथ होगा। इन कार्यक्रमों में सहकारिता क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए प्रमुख सुधारों, गतिविधियों और भविष्य की दिशा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सहकार से समृद्धि का विजन क्या है, पिछले 5 वर्षों में भारत के सहकारी क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव आए हैं और इन सुधारों का लाभ किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक किस प्रकार पहुंचा है। श्रोताओं, महात्मा गांधी का सपना था कि भारत का हर गांव आत्मनिर्भर बने और विकास की धारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उनका मानना था कि ग्राम स्वराज की इस सोच का सबसे मजबूत आधार सहकारिता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं, संसाधनों को साझा करते हैं और एक दूसरे की ताकत बनते हैं, तभी सामूहिक समृद्धि का रास्ता खुलता है। आज भी सहकारिता की यही भावना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण सामर्थ्य मानी जाती है। पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और नई पहल की गई। आइए

0: समझते हैं कि सहकार से समृद्धि के इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए।
1: सहकारिता आंदोलन भारत में नया नहीं है। देश में इसकी शुरुआत एक सदी से भी पहले हुई थी और आज लाखों सहकारी समितियां कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, बैंकिंग और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लेकिन लंबे समय तक इस पूरे क्षेत्र के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। इसी आवश्यकता को देखते हुए 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य था देश के सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को जमीन पर उतारना। केंद्र सरकार की वर्ष 2025 की उपलब्धियों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 114 प्रमुख पहल शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य सहकारी समितियों को केवल ऋण देने वाली संस्थाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुउद्देशीय केंद्र बनाना है। इसी सोच के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के मॉडल उपनियमों में बदलाव किया गया ताकि वे कृषि के साथ साथ डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण और अन्य गतिविधियों में भी काम कर सकें। सरकार के अनुसार अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन नए उपनियमों को अपनाया है। सहकारिता क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई नई संस्थाओं का भी गठन किया गया। इनमें नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के माध्यम से सहकारी उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के जरिए गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल शामिल है। सहकारिता को नए क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में सरकार ने भारत टैक्सी जैसी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहां टैक्सी और बाइक चालक स्वयं सहकारी संस्था के सदस्य हों। इससे उन्हें कम कमीशन देना पड़े और उनकी आय का बड़ा हिस्सा सीधे उनके पास तक पहुंचे।
0: श्रोताओं, सहकार से समृद्धि की सोच अब केवल कृषि या सहकारी बैंकों तक सीमित नहीं है। इसका दायरा तकनीक, डिजिटल सेवाओं, निर्यात, जैविक खेती और नए रोजगार के अवसरों तक बढ़ाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार ने सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ उदय भान सिंह जी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट गांधीनगर के पूर्व निदेशक डॉक्टर ए के अस्थाना से इन्हीं विषयों पर विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड।
3: भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। दुनिया की कुल सहकारी समितियों में से लगभग 25% भारत में है। आज देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनसे करीब 30 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। सहकारिता देश में लगभग 30 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और इसका सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था से है। इसलिए सहकारिता केवल एक संगठन या व्यवस्था भर नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक जीवन हिस्सा है। सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय की आवश्यकता महसूस की गई। इसी सोच के तहत जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, तब प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया और आज यही मंत्र देश की सहकारिता नीति का मूलाधार बन गया है।
2: सहकार से समृद्धि।
0: श्रोताओं, किसी भी व्यवस्था को समय के साथ प्रभावी बनाए रखने के लिए उसका आधुनिक होना आवश्यक है। आज जब देश तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तब सहकारिता क्षेत्र भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ रही है, सेवाएं तेज हो रही है और गांवों तक नई सुविधाएं पहुंच रही है। यही डिजिटल बदलाव किस तरह ग्रामीण भारत को नई ताकत दे रहा है, सुनिए हमारी अगली रिपोर्ट।
1: पिछले कुछ वर्षों में सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण आजीविका को डिजिटल तकनीक से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल कामकाज को आसान बनाना नहीं, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाना, महिलाओं और युवाओं को नए अवसर देना और गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना भी है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के कंप्यूटरीकरण का अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। हजारों PACS को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। इससे रिकॉर्ड रखना आसान हुआ है, सेवाएं तेज हुई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, डिजिटल भुगतान तथा कई सरकारी सेवाओं की पहुंच भी बढ़ी है। अब इसी दिशा में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लोक ओएस नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। ये मंच स्वयं सहायता समूहों और उनके संगठनों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की बचत, ऋण भुगतान, आजीविका और अन्य वित्तीय गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे कागजी काम कम होता है, लेन देन पर नजर रखना आसान होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। हर वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड भी इसी प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाता है। लोक ओएस की पहुंच आज 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 762 जिलों, 7241 विकास खंडों,

0: 57,000 ग्राम पंचायतों और 5,92,000 गांवों तक हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म से 94,00,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह और लगभग 10 करोड़ सदस्य जुड़े हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए हाल ही में शी लिप्स नाम का एक डिजिटल मंच भी शुरू किया गया। ये महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने, उसे आगे बढ़ाने और उसकी प्रगति पर नजर रखने में मदद करेगा। कृषि और गैर कृषि दोनों तरह के ग्रामीण उद्यमों को इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसी डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से लखपति दीदी अभियान को भी मजबूती मिल रही है। इस प्लेटफॉर्म पर 3,87,00,000 संभावित लखपति दीदियों की प्रगति की डिजिटल निगरानी की जा रही है। इससे योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और उनकी प्रगति पर लगातार नजर रखने में सहायता मिल रही है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: सहकारिता के इन प्रयासों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारी संस्थाएं लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर ये बदलाव किस तरह दिखाई दे रहा है और सहकारिता कैसे लोगों के जीवन को बदल रही है, आइए इस विषय पर सुनते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट मदुरई के डॉक्टर ए मईल मुरुगन को।
2: पहले अधिकांश सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तो थीं, लेकिन गांव के लोगों को अपनी कई आवश्यक सेवाओं के लिए शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। अब सहकारिता के माध्यम से अनेक बुनियादी सुविधाएं गांवों तक पहुंच रही हैं। आज महिलाएं और युवा सहकारिता से मिलने वाले विभिन्न लाभों के प्रति अधिक जागरूक हैं। सहकारी मेडिकल स्टोर से लेकर गोल्ड लोन जैसी सुविधाएं भी अब उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को हमारी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के माध्यम से ऋण मिल रहा है। इसके साथ ही वे किसी भी समय चाहे 1 रुपया हो या उससे अधिक राशि आसानी से जमा या हस्तांतरित कर सकती हैं। इन सुविधाओं से ग्रामीण लोगों को विशेषकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और उन्हें सहकारिता का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। जब महिलाएं और युवा सहकारिता की अवधारणा और उसके लाभों को समझते हैं तो वे अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि हम कहते हैं सहकारिता एक बेहतर दुनिया के निर्माण का आधार है।
3: कोऑपरेटिव्स बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में किए गए सुधारों ने पारदर्शिता, तकनीक और जन भागीदारी को नई दिशा दी है। सहकारी संस्थाओं को आधुनिक बनाकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों तक नए अवसर पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि भारत की समृद्धि का रास्ता उसके गांवों से होकर जाता है। उनका ग्राम स्वराज का विचार आत्मनिर्भर, सहभागी और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना करता था। आज सहकार से समृद्धि का मंत्र उसी सोच को नए समय की जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग मोहित सिंह।
4: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मुज जलडमरू मध्ये तिनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिकवायु आपूर्तौ आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्तीकृताः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केंद्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मंचात् बाल शोषण संबद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव 7 दिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते, कोंकणे, गोवायां, मध्य महाराष्ट्रे तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्तसंचेतना घोषिता। अपि च ICC महिला वर्गस्य 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्याम स्पर्धायां इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन

0: Good evening, listeners, and welcome to this yet another information-packed edition of Market Mantra, the program in which we bring to you all the important economic news of the day. And besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444. 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. To walk you through today's show, your very own anchors, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, बहुत धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त. इन बुलियन मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स.

0: and FPIs reversed trend in June with net inflow of over 4,600 crore rupees across all segments.
1: ओपेक प्लस ने अगस्त से कच्चे तेल के दैनिक उत्पादन में 1,88,000 बैरल्स की वृद्धि करने की घोषणा की. सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त और एफपीआईज ने जून में रुख पलटा. भारतीय पूंजी बाजार में 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश.
0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, let's look at the first big story of the day. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to increase oil production by 188,000 barrels per day from August this year, following a virtual meeting to review global oil market conditions. In a statement released after a meeting today, the seven OPEC Plus member countries comprising Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman said the decision is aimed at supporting market stability. They also reaffirmed their commitment to a cautious and flexible approach with the option to increase, pause or reverse production adjustments depending on market conditions. The oil producing group said it will continue to monitor the global oil market and ensure compliance with agreed production targets. The next meeting of the participating countries is scheduled for the 2nd of August.
1: हम एक बार फिर से श्रोताओं को याद दिला दें कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा करेंगे. हम रविवार के हर रविवार की तरह जैसे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष गुप्ता. और अगर श्रोताओं के पास कोई सवाल हैं तो आप 2331-4444 2371-0481 और 2371-7106 पर फ़ोन कर सकते हैं अपने सवाल पूछने के लिए म्यूचुअल फंड्स पर. और अगली खबर पर चलते हैं सरबजीत. हम पीएनजी पर जो कुछ पाबंदियां लगाई थी सरकार ने अभी पिछले दिनों जो संकट था पश्चिम एशिया का उसको देखते हुए वो हटा ली गई हैं. सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं. ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से फिर से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी. होर्मुज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था. आशुतोष, अभी दो खबरें जो एक कवि सरबजीत ने पढ़ी हैं और दूसरी ये है वो ओपेक प्लस ने कहा है कि हम अब रोज उत्पादन बढ़ा रहे हैं डेली का अपना, और पीएनजी पर जो हमारे यहाँ पाबंदियाँ लगी थी वो भी हटा ली गई हैं. अब कुल मिलाकर लग रहा है कि जिस तरह के संकट के बादल छा रहे थे वो कुछ हद तक छट गए हैं. थोड़ा आश्वस्त महसूस कर रहे हो क्या? बाजार भी लगेगा आश्वस्त जो हम महसूस कर रहे हैं, बाजार पर भी दिखाई देगा?
2: जी बिल्कुल, जो पिछले एक दो हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं वो एक राहत का माहौल है, और वो ही देखा गया है कि किस तरह इक्विटी मार्केट्स ने भी रिएक्ट किया है इस इन इन न्यूज़ को लेके. अच्छा खासा एक जंप एक शॉर्ट पीरियड में इस दौरान मार्केट्स में देखा गया है. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए एक मेरे ख्याल एक सीख छुपी है सारे इन्वेस्टर्स के लिए कि मैं काफ़ी सारे ऐसे निवेशकों को जानता हूँ जिन्होंने ये लगभग तय कर लिया था कि ये तो लड़ाई लंबी चलने वाली है और मार्केट्स में तनाव का माहौल बना रहेगा, मार्केट्स और नीचे जाएंगी, और काफ़ी पैसा उन्होंने मार्केट से विड्रॉ किया. और उसके बाद अचानक मार्केट में ये पलटफेर आया पिछले एक डेढ़ हफ्ते में, और जो एक

0: 4-5% का गेन एक जो काफी लंप में मार्केट में देखा गया है, तो उन्होंने लॉस में पार्टिसिपेट किया, गेन से वो वंचित रह गए, तो उनके पोर्टफोलियोज में ये बढ़त नहीं दिखती है जो कि मार्केट में दिख रही है. तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये माहौल, ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, तो कुछ कुछ न्यूज़ आती रहेगी, हो सकता है संधि होगी, यूएस ईरान के बीच में संधि ना हो पाए. आपको अपने गोल्स, अपने सर्कमस्टांसेस पर फोकस करके निवेश का निर्णय लेने हैं, ना कि यूएस ईरान में क्या चल रहा है उस पर. तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और मार्केट्स में थोड़ी राहत का माहौल है, उससे प्रोत्साहन प्राप्त करें.
1: All right, so as you know, Subodh, you know, he raised hopes. He said that the clouds are looking just better now, little bright and blue. And you spoke about categories of funds. So all said and done, let's just revise our basics of investing in mutual funds. When it comes to choosing the category of fund, how important is the criteria of investment goals, risk appetite? What do you have to say to our listeners on this?
0: Very important. In fact, more important than choosing the right fund, people often spend a lot of time thinking about picking the best mutual fund. But even before that, there is no definition of a best mutual fund. Nobody knows which is going to be the best. Often people mistake best mutual fund with the top performing mutual fund. They want to be in the fund which will give best returns in the next 1 year.
1: Correct.
0: And that is a wrong pursuit, in my opinion. The definition of best fund starts from what is the most suitable investment fund for you. And as you rightly said, that one has to focus on one's risk appetite, one's investment objectives, one's time horizon, and accordingly pick the right one. If you have at least 5-7 years or more of investment horizon, you can look at flexicap funds, value oriented funds, all the mainstream diversified equity funds, they can be suitable. If you have 3-5 years of investment horizon, look at hybrid funds. You have funds like balance advantage funds, which optimize, which give you a fair mix of equity and debt, and those could be your choice. Anything below 3 years, you have to have you have to play caution. You don't have to maximize returns, and focus more on debt oriented investment products. So broadly, that is the main thumb rule that should guide anybody's asset allocation.
1: We'll come back to you on that, Ashutosh. Meanwhile, let's connect with our first caller from Jaipur. Jitinder ji, swagat hai, sawal pooch.
2: हाँ सर, ये जैसे काफी दिन से मार्केट डाउन हुआ, अभी थोड़ा सा उठा है, तो हम आपसे एक दो प्रश्न है. एक तो कौन सा सेक्टर सस्ता है सेक्टोरियल फंड में, ठीक है, कौन सा सेक्टर सस्ता, आईटी तो है ही है, तो और एक दूसरा कौन सा है. और दूसरा सर की वो एक क्लीन एनर्जी फंड आया था मोतीलाल ओसवाल में, क्लीन एनर्जी, तो किस टाइप का फंड है उसको, मतलब उसमें कौन सा किस टाइप का स्टॉक रहेगा क्लीन एनर्जी.
0: देखिए, पहला आपने बोला कि कौन से सेक्टर में, मेरे लिहाज में आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप यही एक निर्णय है जो कि आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए. तो आप इस बात की इतनी बहुत चिंता ना करें कि कौन सा सेक्टर सस्ता है. आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करिए. एक अगर आपका अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, तो ये निर्णय फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए. उनका दैट इज़ देयर डे जॉब, वो यही उनका काम है. तो आप अगर सेक्टर्स का चुनाव करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो फंड मैनेजर का काम है, आधा काम फंड मैनेजर का आप अपने जिम्मे ले रहे हैं. तो उससे बचिए. आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव के अलग अलग टाइम पीरियड्स में अच्छे रिटर्न देने का जिनका अनुभव है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करिए, और बाकी डिसीजंस आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए. क्लीन एनर्जी, देखिए आजकल काफ़ी जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ये माना जा रहा है कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, इस टाइप के जो एनर्जी सोर्सेज हैं, उनके लिए माना जाता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है. तो ये जितने भी क्लीन एनर्जी थीम पे निर्धारित इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो इस टाइप के एवेन्यूज में देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि सोलर, विंड, रिन्यूएबल, इस टाइप के एनर्जी सोर्सेज से बेनिफिट प्राप्त कर सकती हैं, और वो उनमें निवेश करते हैं.
3: जी आशुतोष, आपने अभी जैसा बताया कि सेक्टर्स पर गौर ना करें आप ज़्यादा, ये आप फंड मैनेजर पर छोड़ दें, लेकिन हर छो

0: छोटे बड़े हर निवेशक के मन में ये सवाल रहता है कि भाई जब जब म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं वो सेक्टोरल फंड्स बना रही हैं तो नेचुरली जिज्ञासा रहती है लोगों की, अच्छा हम इसको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं भाई, तो आखिर आखिर ऐसे फंड्स हैं तो लोग उन पर जाएंगे भी, किनको बचना चाहिए और किनको उन पे जाना चाहिए, लेकिन इस पर चलिए हम आगे बात करेंगे। अभी सोनीपत से दीपक दहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: सर, मुझे एक इसके बारे में पूछना है, सेबी का कोई नया फंड आया था SIF करके, और दूसरा एक क्वेश्चन है जीरोधा का एक लाइफ साइकिल फंड आया 2041, दोनों के बारे में बता दीजिए सर, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे क्या होगा, ये क्या प्लान है इनका।
2: जी जी, SIF जो आपने कहा ये एक नए टाइप के फंड्स हैं, आप ये मानिए कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS और म्यूचुअल फंड के बीच में है। 10 लाख का इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है और ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स नहीं यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर्स में ज़्यादा एक्सपोजर्स ले सकते हैं, शॉर्ट पोर्टफोलियो शॉर्ट पोजिशंस भी ले सकते हैं, जो कि कुछ ऐसी हाई रिस्क स्ट्रेटजीज ये लोग यूज़ कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के लिए निषेध हैं बाय रेगुलेशन। हाई मिनिमम टिकट साइज इनका काफ़ी हाई है, इनको माना जाता है कि उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो इस टाइप के थोड़े ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को समझते हैं, उनके रिस्क को समझते हैं और उस रिस्क के लिए उनमें एपिटाइट है। तो SIF को कुल मिलाकर मैं कहूँगा बहुत नए प्रोडक्ट हैं, इनको थोड़ा समय दीजिए, कुछ नोवेल्टी अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने में सक्षम है कि नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्या ये कुछ ऐसी आपकी निवेश की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है जो कि एक साधारण लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं होती है, ये अभी ओपन क्वेश्चंस हैं, इनका कोई बहुत डेफिनेटिव आंसर नहीं है। इन फंड्स को थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने दीजिए, इनमें निवेश करने की जल्दी में ना रहें, कुछ ऐसा आपका नुकसान नहीं हो रहा है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके हाथ से निकल जाएगी, तो बिल्कुल कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे फोमो कहते हैं उसमें पढ़कर इनमें इन्वेस्ट ना करें, इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए उसके बाद निर्णय लीजिए। दूसरा आपने पूछा लाइफ साइकिल फंड, जी ये भी एक नए प्रकार के फंड्स हैं। जीरोधा ने पहला फंड अभी लॉन्च किया है, NFO पीरियड शायद उसका अभी ऑन है। ये फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि अगर आपका मानिए 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो शुरू में ज़्यादा इक्विटी में एलोकेट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे टारगेट डेट पास आती जाएगी, जैसे जैसे निवेश के इनके इन फंड्स की अवधि समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे ये इक्विटी से थोड़ा सेफ डेट में ऑटोमेटिकली आपका पैसा मूव करते जाएंगे। तो ये काफ़ी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि जिसमें आपको एसेट रीबैलेंसिंग अपने पोर्टफोलियो की नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली वो फंड हाई रिस्क से थोड़ा मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क की तरफ बढ़ता चलेगा जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अगेन मैं यही कहूँगा कि नए टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो पहला प्रोडक्ट आया है, ये किस तरह निवेश करते हैं, क्या ये आपको अच्छा एक्सपोजर और ओवरऑल टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न देने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं, इनका खर्चा कैसा होता है। हाइब्रिड्स में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनमें कुछ कॉम्पोनेंट डेट होता है, कुछ इक्विटी होता है, एक मिश्रित ये प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी तौर पर देखा गया है कि इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इक्विटी के नज़दीक होता है, इक्विटी के बराबर होता है, तो उस सेंस में ये थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बन सकते हैं। हाँ, टैक्स में ज़रूर ये टैक्स बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि रीबैलेंसिंग आपके लिए टैक्स फ्री हो जाती है, फंड करता है, आपको नहीं करनी होती, तो कुछ इनके एडवांटेजेस हैं, कुछ शायद इनके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, समय दीजिए इनको, इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए।
3: ऑलराइट, लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, केशव जी अपना सवाल पूछें। जी
4: सर, तो वहाँ हमारे को एक सजेशन देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं एजेंट के द्वारा, तो हमें क्या सावधानी बरतनी है कि जो एजेंट हमसे जो फंड बताएगा वो किस ढंग के तरीके से हम समझे कि ये सही हमें रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि हमारी एफडी है और एफडी 2 महीने बाद मैच्योर हो जाएगी, तो सही सिचुएशन क्या है कि आपको ये एफडी के बराबर कोई म्यूचुअल फंड है।
2: जी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपका शायद कुछ एफडी में निवेश है जो आप म्यूचुअल फंड में करना चाह रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपको सलाह दे रहे हैं कुछ म्यूचुअल फंड में जाने की, वो कैसे आप पता करें कि वो सलाह सही है कि नहीं। तो देखिए दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको यूलिप से बचना है। काफ़ी बार ये देखा गया है कि जब आप कोई किसी बैंक के थ्रू किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करने

0: जाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड बताकर यूलिप बेच दी जाती है। पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपको यूलिप ना बेची जाए। अगर किसी भी निवेश प्रोडक्ट में आपको ये बताया जाता है कि उसमें कुछ इंश्योरेंस भी आपको साथ में मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि एक निवेश के साथ अगर इंश्योरेंस मिश्रित है तो एक यूलिप प्रोडक्ट है, आप उनसे बचें। पहला तो ये। दूसरा ये कि आप नए इन्वेस्टर हैं, मेरी राय में किसी भी नए इन्वेस्टर को आप सारा अपना पैसा जितना भी आपका एफडी में है उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में ना लगाएं। आप एक छोटी रकम म्यूचुअल फंड्स में आप मात्र 500 रुपये 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप एक बहुत छोटी रकम म्यूचुअल फंड में लगाएं, 2-3 महीने उसमें निवेशित रहें, फिर उसको रिडीम करिए, पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आप ये फुल साइकिल करके देखिए, आपको फर्स्ट हैंड थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है। उसके बाद थोड़े बड़ी मात्रा में थोड़े बड़े अमाउंट का निवेश प्लान करें। और शुरुआती निवेशकों के लिए अगर आपके पास लंबा टाइम होराइजन है तो मेरा ख्याल एक निफ्टी 50 बेस्ड इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा। उसमें सारे ही फंड लगभग एक जैसे होते हैं, फंड का चुनाव करना बहुत आसान होता है। किसी भी निफ्टी 50 फंड में एक छोटी रकम से शुरुआत करिए, उसमें कुछ 2-4 महीने बने रहिए, उसको देखिए, उसको ट्रैक करिए और उसमें से पैसा रिडीम भी करिए। जब आप ये फुल साइकिल कर लेंगे अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बड़ा निवेश करने के लिए।
1: जी, और हम लौटे अपने सवाल पर कि सेक्टर्स हैं तो क्यों ना हम उनको भी एक्सप्लोर करें।
0: जी, तो देखिए मेरी राय में आम तौर पर ज़्यादातर निवेशकों को सेक्टर फंड से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी सेक्टर लेंगे आपको पहले ये देखना होगा कि क्या वो सेक्टर का आपका अपना एक्सपोजर उस सेक्टर में आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कितना है। अब जैसे बैंकिंग फंड की आप बात करते हैं तो बैंकिंग फंड के बहुत सारे सेक्टर फंड्स आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स फंड्स भी बैंकिंग के आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना आम तौर पर किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो 25-30% या उससे भी ज़्यादा मात्रा में उनका पैसा बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी लगा होता है। तो अगर आप ये नॉलेज के साथ किसी सेक्टर फंड का चुनाव नहीं करेंगे तो आप बहुत ओवर एक्सपोजर शायद ले लेंगे किसी भी सेक्टर में। तो पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड्स बनाए ही निवेशकों के लिए एक बहुत ही आसान, सुगम, हैंड्स फ्री एक्सपोजर के लिए गए थे। अगर आपको फिर भी किसी सेक्टर पे कोई खास कन्विक्शन है, कुछ खास जानकारी है जिसके बलबूते पर आप उस सेक्टर में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेना ही चाहते हैं तो 5-7%, 10%, उससे ज़्यादा मेरे राय में आपको सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।
1: जी,
2: एंड लेट्स हियर व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर वांट्स टू आस्क। मिस्टर रामाकांत, प्लीज पोज योर क्वेश्चन। रामाकांत जी, सवाल पूछें।
3: जी नमस्कार, मैं कोलकाता से रामाकांत सिंह बोल रहा हूँ।
2: जी,
3: मैंने लास्ट 5-6 महीने में थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया है एमएस में। ये हमको कितने दिन तक चलाना चाहिए और इसे रिलेटेड इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा कुछ जानकारी दें प्लीज।
0: जी, तो पहला सवाल कितने दिन तक। देखिए म्यूचुअल फंड्स की कोई निश्चित अवधि के प्रोडक्ट्स नहीं है, आप जब तक इसमें निवेशित रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, आपके पास फुल लिक्विडिटी होती है, आप जब भी पैसा निकालना चाहें आप निकाल भी सकते हैं। तो ये एफडी की तरह कोई फिक्स्ड टेन्योर वाले फंड्स नहीं होते हैं, आपकी मर्जी है, ये आप पे निर्धारित करता है कि आपको कब पैसे की ज़रूरत है, आप तब इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका लंबे समय का निवेश है, आपने इक्विटी में एक वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने पैसे की बढ़ोतरी के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है तो इसमें बने रहिए। कम से कम इक्विटी फंड्स के निवेश को 5-7 साल आपको कम से कम देने होते हैं जिससे कि उसका कुछ बेनिफिट आपको प्राप्त हो पाए। देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक पेड़ लगाने की तरह है जिसमें आपको कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, नहीं सालों में आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो आप इसमें बने रहिए और इसकी एनएवी जो आपको मिली होगी उसकी ग्रोथ होती है। आप अगर उसकी एनएवी ट्रैक कर रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे एनएवी बढ़ेगी वो आपका गेन है। तो जब आप बेचेंगे बड़ी हुई एनएवी पे बेचेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका गेन है म्यूचुअल फंड से।
1: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से, शंकर स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
4: मेरा अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है डेट फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड में ICICI की, तो उनमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं है, क्या आर्बिट्राज फंड कंसिडर किया जाए या डेट फंड के रिटर्न इतने कम क्यों हुए हैं रिसेंट टाइम्स, बिकॉज एफडी में तो वी हैव टू पे टैक्स और TDS वगैरह एवरी ईयर एंड डेट फंड में वी आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स अनलेस वी रिडीम। सर दूसरा सवाल है, इफ वी मर्ज टू फ्लेक्सी कैप स्कीम और सिमिलर इक्विटी स्कीम तो क्या एक मर्ज मतलब एक से निकल के दूसरे में जाते हो क्या रिडेम्पशन माना जाएगा या ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जिसमें हमें टैक्स ना लगे, हम दो फंड को एक मर्ज कर दे एक ही फंड में।

0: ek hi fund hai uske, and it will not be treated as a redemption, or there is no such scheme and we have to go for via redemption scheme. Thank you.
1: Sure. पहला सवाल आपका शॉर्ट टर्म फंड को लेकर, देखिए हाल फिलहाल में जैसे ये ग्लोबल सिचुएशन जो रहा है, वॉर का सिचुएशन रहा है, तो यील्ड्स बॉन्ड मार्केट में बढ़ी हैं. जब भी यील्ड बढ़ती हैं तो बॉन्ड फंड्स के रिटर्न गिरते हैं, बॉन्ड्स के रिटर्न गिरते हैं, और उसी लाइन पर बॉन्ड फंड्स के रिटर्न भी गिरते हैं. तो कुछ हाल फिलहाल के दो तीन महीने बॉन्ड फंड्स के लिए मुश्किल रहे हैं, और वही उनके रिटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होता है. फंड का चुनाव आपका अच्छा है, आप बने रह सकते हैं इस फंड में, और आपका एनीवेज शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो एफडी के आसपास या एफडी से शायद थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दे पाए. तो उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आप उम्मीद रखते हैं तो शायद आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा. उतने रिटर्न देने में फंड सक्षम है. हाँ, पिछले दो तीन महीने डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे माहौल बदलेगा तो इनके रिटर्न्स भी बेटर हो सकते हैं. आर्बिट्राज फंड्स आपने कहा, देखिए वही 5-6% रिटर्न की अगर आपकी अभिलाषा है तो आर्बिट्राज फंड्स आपको मेरा ख्याल निराश नहीं करेंगे. डेट फंड से थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन उनका बिगेस्ट एडवांटेज है टैक्स एडवांटेज. डेट फंड्स आपकी स्लैब रेट पर, अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो आपको उतना टैक्स देना पड़ जाता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है. आर्बिट्राज फंड्स वहीं इक्विटी के तरह टैक्सेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न आर्बिट्राज फंड्स का थोड़ा बढ़ जाता है. तो बिल्कुल आप उस लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप 6% के दायरे में आसपास अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है आप, तो आर्बिट्राज फंड्स को देख सकते हैं. इक्विटी से फिर आपने तीसरा सवाल पूछा, स्विच आप करना चाहते हैं दूसरे फंड में, तो देखिए टैक्स तो भरना ही पड़ेगा. आप अगर सेम फंड हाउस के भी दूसरे फंड में आप मूव करते हैं, यहाँ आप सेम फंड के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में मूव करते हैं, तो भी उसे रिडम्पशन एंड बाय ट्रीट किया जाता है और उस पर टैक्स लगेगा. तो देखिए ऐसा कोई भी तिलिस्म नहीं है जिससे आप उससे बच पाएं. तो सोच समझ कर, आपका इन्वेस्टर के लिए लेसन यही है कि आप सोच समझ कर अपने रिडम्पशंस प्लान करें, बहुत रेकलेसली एक फंड से दूसरे में जल्दी जल्दी चर्न ना करें.
2: और अमित जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, सवाल पूछें.
3: थैंक यू सर. सर दो सवाल थे कि मल्टी एसेट फंड और मल्टी कैप फंड में क्या फर्क है, और लिक्विड फंड और ओवरनाइट में क्या डिफरेंस हो, ये जानना था. मैं फोन से आपका आंसर सुनता हूँ. थैंक यू
1: जी. योर फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कैप और मल्टी एसेट, फ़र्क ये है कि मल्टी एसेट फंड्स एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड हैं. इनमें इनके मैंडेट में इन्हें कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है. टिपिकली इन फंड्स में देखा गया है कि इक्विटी, डेट और गोल्ड या सिल्वर, और कुछ फंड्स थोड़ा सा रीट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं. तो ये सारी एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी एसेट फंड्स में मिलता है. अब इस कैटेगरी के अलग अलग फंड्स काफ़ी अलग अलग तरीके से मैनेज होते हैं, तो ये बहुत कंपेरेबल एक दूसरे से शायद नहीं होते. कोई इक्विटी में बहुत ज़्यादा रखता है, कोई इक्विटी में बहुत कम रखता है, तो डिफरेंट फंड्स कैन हैव अ वेरी डिफरेंट एसेट एलोकेशन दैट दे फॉलो. बट द ब्रॉड प्रिमाइस इज एज पर द रेगुलेटरी मैंडेट दे हैव टू इन्वेस्ट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस. सो दैट इज मल्टी एसेट फॉर यू. मल्टी कैप फंड्स आर प्योर इक्विटी फंड्स विच इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड ईच ऑफ दीज 3 मार्केट कैप सेगमेंट्स शुड हैव एटलीस्ट 25% ईच. सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट.
4: जी अगले कॉलर है दिल्ली से राजीव, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
5: मार्केट मंत्रा जी, जैसे मेरे को SIP करनी है, तो मैं PSE इक्विटी फंड मेरे लिए ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि स्मॉल कैप जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सके.
1: देखिए अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा दोनों से ही बचें, PSU और स्मॉल कैप. आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड का चुनाव करें और उससे शुरुआत करें, क्योंकि बाकी दोनों काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हाई रिस्क हो सकते हैं. तो शुरुआती इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन कैटेगरीज में से कोई एक या दो फंड्स का चुनाव करें और उसमें अपना SIP शुरू करें.
2: और BT पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पुणे से, सवाल पूछें.
6: हाँ, गुड इवनिंग मैम.
2: गुड इवनिंग.
6: मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने बात की थी कि यूलिप में ना करे, यूलिप लिंक्ड जो इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी रहता है इन्वेस्टमेंट, और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड, और यूलिप में बताया जाता है कि उसमें टैक्स फ्री इनकम रहता है और एडिशनल उसमें इंश्योरेंस भी रहता है, तो कौन सा बेनिफिशियल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे या यूलिप लिंक्ड जो रहता है प्लान उसमें इन्वेस्ट करें प्लीज.
1: देखिए मेरी राय में, जैसे मैंने पहले कहा था, आप यूलिप से बचें. यूलिप्स एक क्यों,

0: वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं तो नेट रिजल्ट ये होता है कि ना आपको इंश्योरेंस पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है और ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट एक एफिशिएंट तरीके से काम करती है। थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन के कमीशन्स उनमें ज़्यादा होते हैं, शुरू के ही एक दो साल में काफ़ी कमीशन्स में आपका पैसा कट जाता है, तो कंपाउंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए जितना पैसा बचता है तो आपको शुरू में ही जो सेटबैक लगता है, योर रिटर्न्स आर ऑलवेज कैचिंग अप। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स के लिए यही रहती है कि अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, अपनी इंश्योरेंस नीड के लिए एक सस्ता साधारण टर्म प्लान लें जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में समय शोड लीजिए और कम प्रीमियम में, और बचा हुआ पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स या बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में निवेश करें।
1: जी, और कीमती धातुओं के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मई के बाद पहली बार साप्ताहिक बढ़त देखी गई। एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.2% की बढ़त हुई और ये 147,378 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% बढ़कर 237,410 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। और एफपीआई का हाल ये रहा कि जुलाई के 3 शुरुआती कारोबारी सत्रों में लिवाली का रुख बनाए रखा एफपीआईज ने और इस महीने अब तक उन्होंने 708 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे हैं। जून में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 49,340 करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन अब ये रुख उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय ऋण बाजार में एफपीआई ने पिछले महीने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। जनरल लिमिट के तहत उन्होंने 30,620 करोड़ रुपए, एफएआर के जरिए 21,652 करोड़ रुपए और वीआरआर के तहत 3,246 करोड़ रुपए का निवेश किया। और आशुतोष, आज वक्त इतना ही है सवालों के जवाब देने के लिए और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स एंड एफपीआईज रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीज अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र। सी यू टुमारो, अंटिल देन गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश

0: दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Qatar Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Rasim Al Thani in Doha today. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, External Affairs Minister said the two leaders explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said this project will connect the district to industrial development, defence production and the vision of a self-reliant India. The world-renowned Pandwani exponent and Padma Vibhushan awardee Dr. Tejan Bhai, who brought the folk culture of Chhattisgarh to global prominence, was accorded a state funeral at her native village Ganiari, Indore district this evening. On the occasion, public representatives, administrative officials, artists, literateurs and thousands of mourners paid their tearful respects to the legendary icon of folk art. Renowned Pandwani singer passed away early this morning. She was suffering from a prolonged illness and was undergoing

சங்கத்தமிழன நிலைத்திருந்த

அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே. நண்பனே நண்பனே நண்பனே.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी वक्तव्य में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के नवोन्मेषकों की अत्यधिक रुचि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल पर अब तक हजारों इच्छुक उद्यमियों और नवोन्मेषकों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए

0: अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन साझा करने की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। UKMTO ने बताया कि जहाज के होदेइदा से 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अज्ञात सशस्त्र हमलावरों द्वारा हमले की सूचना दी है। मामले की जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और खेलों में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Qatar Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha today. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, External Affairs Minister said the two leaders explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministries of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, this project will connect the district to industrial development, defence production and the vision of a self-reliant India. The world-renowned Pandwani exponent and Padma Vibhushan awardee Dr. Tijan Bhai, who brought the folk culture of Chhattisgarh to global prominence, was accorded a state funeral at her native village Kanyari in Durg district this evening. On the occasion, public representatives, administrative officials, artists, literators and thousands of mourners paid their tearful respects to the legendary icon of folk art. Renowned Pandwani singer passed away early this morning. She was suffering from a prolonged illness and was undergoing treatment at AIIMS Raipur. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, that is OPEC Plus, has agreed to increase oil production by 188,000 barrels per day from August this year, following a virtual meeting to review global oil market conditions. In a statement released after its virtual meeting today, the 7 OPEC Plus member countries comprising Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman said the decision is aimed at supporting market stability. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. In Raigarh district, 10 to 12 tourists were safely rescued by the police from Adoshi waterfall near Khopoli after the water level suddenly rose. Authorities have advised people to stay away from rivers, waterfalls and other water bodies during the monsoon. in Mumbai, a 63.

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल,

0: திரைகணம் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia, प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम

0: ऑपरेशंस यूके एमटीओ ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।

फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: the Prime Minister had to say.
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे. हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है. साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था. 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है.
0: Mr. Subramanian, the Prime Minister also highlighted the importance of industrial clusters in building globally competitive manufacturing sectors. In fact, the Honorable Prime Minister said that semiconductor ecosystems depend on networks of suppliers, testing facilities, design centers, supporting industries, rather than individual factories operating in isolation. What's your comment on this?

आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान, आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1960, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है,

0: उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स, उसी का भी घर में जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है, एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1000-1200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉय से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd generation है, 4th generation है, कुछ एम्प्लॉय मिलेंगे जो बोलेगा 5th generation है। नॉट ओनली एम्प्लॉय, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंगबूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर किया जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
0: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है, डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है

0: उससे लेके जो मेटल आप हाई प्योर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
2: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना, यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है, प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं।
2: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग ईवी, रोबोटिक्स, अभी AI का युग आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
3: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पति, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों।

0: कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
1: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
1: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी, और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे, करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है, ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ों और मादर की थाप गूंजती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारी जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों के बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को

0: साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
1: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
1: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है। और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ही किसी एकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में, शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है TFA का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो एक कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
0: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोज

0: कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
1: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है, तो ये एक हमारा एक एग्जाम्पल सेट होता है। आशीष तानीपुरती, जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का किताब उठाया है, तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
0: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
1: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहां पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
0: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
2: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या बिष्टुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह फैसला बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। ये संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए से निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के

प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 2 ओवर में 1 विकेट खोकर 17 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की यात्रा पर दोहा के कतर में प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत। भारत कल से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। अब समय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की।
1: दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उसके आकलन साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमरीका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 14 और 15 तारीख को ब्रसेल्स में आयोजित होने वाली तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। बैठक के बाद जारी बयान में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित 7 ओपेक प्लस सदस्य देशों में कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। तेल उत्पादक समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा कल से 8 जुलाई के बीच आयोजित किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति में उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ लाया जाएगा। अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर सहयोग और संवाद के लिए प्रमुख अंतर सरकारी मंच हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे सत्र की अध्यक्षता करेंगी। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। सरकारी टेलीविजन के अनुसार ग्रैंड मोसाला में आयोजित प्रार्थना सभा में खामनेई के तीनों पुत्रों के साथ राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ और

0: और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी मोजतबा खामनेई इस सभा में शामिल नहीं थे। 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका के हवाई हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई, उनके परिवार के कई सदस्यों और अन्य वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की मौत के बाद से मोजतबा खामनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। मोजतबा खामनेई ने अपने पिता का स्थान लिया है, लेकिन उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति ने ईरान के नए नेता के ठिकाने के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा 9 जुलाई को मशहद में होगी। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
1: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: And greater economic engagement between these two large countries.
0: इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां के ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की कथित गोलीबारी के बाद से तनाव और बढ़ गया है। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर क्षेत्र में हो रहे पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों के बाद 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आज लंदन में विरोध प्रदर्शन किया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 5 ओवर में 1 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने

पर सहमत। भारत कल से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रूपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह

0: Good evening, listeners, and welcome to this yet another information-packed edition of Market Mantra, the program in which we bring to you all the important economic news of the day. And besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. To walk you through today's show, your very own anchors, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, बहुत धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त. इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स एंड एफपीआईज रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीज अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स.
1: ओपेक प्लस ने अगस्त से कच्चे तेल के दैनिक उत्पादन में 1,88,000 बैरल्स की वृद्धि करने की घोषणा की. सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त और एफपीआईज ने जून में रुख पलटा. भारतीय पूंजी बाजार में 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश.
0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, let's look at the first big story of the day. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to increase oil production by 188,000 barrels per day from August this year, following a virtual meeting to review global oil market conditions. In a statement released after a meeting today, the seven OPEC Plus member countries comprising Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman said the decision is aimed at supporting market stability. They also reaffirmed their commitment to a cautious and flexible approach with the option to increase, pause or reverse production adjustments depending on market conditions. The oil producing group said it will continue to monitor the global oil market and ensure compliance with agreed production targets. The next meeting of the participating countries is scheduled for the 2nd of August.
1: हम एक बार फिर से श्रोताओं को याद दिला दें कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा करेंगे. हम रविवार के हर रविवार की तरह जैसे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष गुप्ता. और अगर श्रोताओं के पास कोई सवाल है तो आप 2-3-3

0: 1-4-4-4-4-2-3-7-1-0-4-8-1 और 2-3-7-1-7-1-0-6 पर फोन कर सकते हैं अपने सवाल पूछने के लिए म्यूचुअल फंड्स पर। और अगली खबर पर चलते हैं सरबजीत। हम पीएनजी पर जो कुछ पाबंदियां लगाई थी सरकार ने अभी पिछले दिनों, जो संकट था पश्चिम एशिया का उसको देखते हुए, वो हटा ली गई हैं। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से फिर से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। आशुतोष, अभी दो खबरें जो एक कवि सरबजीत ने पढ़ी हैं और दूसरी ये है, वो ओपेक प्लस ने कहा है कि हम अब रोज उत्पादन बढ़ा रहे हैं डेली का अपना, और पीएनजी पर जो हमारे यहाँ पाबंदियाँ लगी थी वो भी हटा ली गई हैं। अब कुल मिलाकर लग रहा है कि जिस तरह का संकट, जिस तरह के संकट के बादल छा रहे थे वो कुछ हद तक छट गए हैं। थोड़ा आश्वस्त महसूस कर रहे हैं, क्या बाजार भी लगेगा आश्वस्त जो हम महसूस कर रहे हैं बाजार पर भी दिखाई देगा?
1: जी बिल्कुल, जो पिछले एक दो हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं वो एक राहत का माहौल है, और वो ही देखा गया है कि किस तरह इक्विटी मार्केट्स ने भी रिएक्ट किया है इस इन इन न्यूज़ को लेके। अच्छा खासा एक जंप एक शॉर्ट पीरियड में इस दौरान मार्केट्स में देखा गया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए एक मेरे ख्याल एक सीख छुपी है सारे इन्वेस्टर्स के लिए कि मैं काफ़ी सारे ऐसे निवेशकों को जानता हूँ जिन्होंने ये लगभग तय कर लिया था कि ये तो लड़ाई लंबी चलने वाली है और मार्केट्स में तनाव का माहौल बना रहेगा, मार्केट्स और नीचे जाएंगी, और काफ़ी पैसा उन्होंने मार्केट से विड्रॉ किया। और उसके बाद अचानक मार्केट में ये पलटफेर आया पिछले एक डेढ़ हफ्ते में, और जो एक 4-5% का गेन एक जो काफ़ी लंप में मार्केट में देखा गया है, तो उन्होंने लॉस में पार्टिसिपेट किया, गेन से वो वंचित रह गए। तो उनके पोर्टफोलियोज में ये बढ़त नहीं दिखती है जो कि मार्केट में दिख रही है। तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये माहौल, ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, तो कुछ कुछ न्यूज़ आती रहेगी, हो सकता है संधि होगी, यूएस ईरान के बीच में संधि ना हो पाए। आपको अपने गोल्स अपने सर्कमस्टांसेस पर फोकस करके निवेश कर निर्णय लेने हैं, ना कि यूएस ईरान में क्या चल रहा है उस पर। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और मार्केट्स में थोड़ी राहत का माहौल है, उससे प्रोत्साहन प्राप्त करें।
2: All right. So as you know, Subodh, you know, he raised hopes. He said that the clouds are looking just better now, little bright and blue. And you spoke about categories of funds. So all said and done, let's just revise our basics of investing in mutual funds. When it comes to choosing the category of fund, how important is the criteria of investment goals, risk appetite? What do you have to say to our listeners on this?
1: Very important. In fact, more important than choosing the right fund. People often spend a lot of time thinking about picking the best mutual fund. But even before that, there is no definition of a best mutual fund. Nobody knows which is going to be the best. Often people mistake best mutual fund with the top performing mutual fund. They want to be in the fund which will give best returns in the next 1 year.
2: Correct.
1: And that is a wrong pursuit, in my opinion. The definition of best fund starts from what is the most suitable investment fund for you. And as you rightly said, that one has to focus on one's risk appetite, one's investment objectives, one's time horizon, and accordingly pick the right one. If you have at least 5-7 years or more of investment horizon, you can look at flexicap funds, value-oriented funds, all the mainstream diversified equity funds, they can be suitable. If you have 3-5 years of investment horizon, look at hybrid funds. You have funds like balanced advantage funds, which optimize

0: which give you a fair mix of equity and debt, and those could be your choice. Anything below 3 years, you have to have you have to play caution. You don't have to maximize returns and focus more on debt oriented investment products. So broadly, that is the main thumb rule that should guide anybody's asset allocation.
1: We'll come back to you on that, Ashutosh. Meanwhile, let's connect with our first caller from Jaipur. Jitinder ji, swagat hai, sawal poochhe.
2: हाँ सर, ये जैसे काफी दिन से मार्केट डाउन हुआ, अभी थोड़ा सा उठा है, तो हम आपसे एक दो प्रश्न है। एक तो कौन सा सेक्टर सस्ता है सेक्टोरियल फंड में, ठीक है, कौन सा सेक्टर सस्ता, आईटी तो है ही है, तो और एक दूसरा कौन सा है। और दूसरा सर कि वो एक क्लीन एनर्जी फंड आया था मोतीलाल ओसवाल में, क्लीन एनर्जी, तो किस टाइप का फंड है उसको, मतलब उसमें कौन सा किस टाइप का स्टॉक रहेगा क्लीन एनर्जी।
0: देखिए, पहला आपने बोला कि कौन से सेक्टर में, मेरे लिहाज में आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप यही एक निर्णय है जो कि आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आप इस बात की इतनी बहुत चिंता ना करें कि कौन सा सेक्टर सस्ता है। आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करिए। एक अगर आपका अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है तो ये निर्णय फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए, उनका दैट इज देयर डे जॉब, वो यही उनका काम है। तो आप अगर सेक्टर्स का चुनाव करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो फंड मैनेजर का काम है, आधा काम फंड मैनेजर का आप अपने जिम्मे ले रहे हैं, तो उससे बचिए। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव के अलग अलग टाइम पीरियड्स में अच्छे रिटर्न देने का जिनका अनुभव है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करिए और बाकी डिसीजंस आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। क्लीन एनर्जी, देखिए आजकल काफ़ी जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ये माना जा रहा है कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, इस टाइप के जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनके लिए माना जाता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो ये जितने भी क्लीन एनर्जी थीम पे निर्धारित इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इस टाइप के एवेन्यूज में देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि सोलर, विंड, रिन्यूएबल, इस टाइप के एनर्जी सोर्सेज से बेनिफिट प्राप्त कर सकती हैं और वो उनमें निवेश करते हैं।
3: जी आशुतोष, आपने अभी जैसा बताया कि सेक्टर्स पर गौर ना करें आप ज़्यादा, ये आप फंड मैनेजर पर छोड़ दें, लेकिन हर छोटे बड़े हर निवेशक के मन में ये सवाल रहता है कि भाई जब म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं वो सेक्टोरल फंड्स बना रही हैं तो नेचुरली जिज्ञासा रहती है लोगों की, अच्छा हम इसको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं भाई, तो आखिर ऐसे फंड्स हैं तो लोग उन पर जाएंगे भी, किनको बचना चाहिए और किनको उन पे जाना चाहिए, लेकिन इस पर चलिए हम आगे बात करेंगे। अभी सोनीपत से दीपक दहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार सर।
3: नमस्कार
4: सर, मुझे एक इसके बारे में पूछना है, सेबी का कोई नया फंड आया था SIF करके, और दूसरा एक क्वेश्चन है जीरोधा का एक लाइफ साइकिल फंड आया 2041, दोनों के बारे में बता दीजिए सर, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे क्या होगा, ये क्या प्लान है इनका।
0: जी SIF जो आपने कहा, ये एक नए टाइप के फंड्स हैं। आप ये मानिए कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS और म्यूचुअल फंड के बीच में है। 10 लाख का इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है और ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स नहीं यूज करते हैं। ये फ्यूचर्स में ज़्यादा एक्सपोजर्स ले सकते हैं, शॉर्ट पोर्टफोलियो शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकते हैं, जो कि कुछ ऐसी हाई रिस्क स्ट्रेटजीज ये लोग यूज़ कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के लिए निषेध हैं बाय रेगुलेशन। हाई मिनिमम टिकट साइज इनका काफ़ी हाई है, इनको माना जाता है कि उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो इस टाइप के थोड़े ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को समझते हैं, उनके रिस्क को समझते हैं और उस रिस्क के लिए उनमें एपिटाइट है। तो SIF को कुल मिलाकर मैं कहूँगा बहुत नए प्रोडक्ट हैं, इनको थोड़ा समय दीजिए। कुछ ये नोवेल्टी अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने में सक्षम है कि नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्या ये कुछ ऐसी आपकी निवेश की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है जो कि एक साधारण लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं होती है, ये अभी ओपन क्वेश्चंस हैं, इनका कोई बहुत डेफिनेटिव आंसर नहीं है। इन फंड्स को थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने दीजिए, इनमें निवेश करने की जल्दी में ना रहें, कुछ ऐसा आपका नुकसान नहीं हो रहा है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके हाथ से निकल जाएगी, तो बिल्कुल कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे फोमो कहते हैं उसमें पढ़कर इनमें इन्वेस्ट ना करें, इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए, उसके बाद

निर्णय लीजिए। दूसरा आपने पूछा लाइफ साइकिल फंड, जी ये भी एक नए प्रकार के फंड हैं। ज़ीरोधा ने पहला फंड अभी लॉन्च किया है, NFO पीरियड शेयर उसका अभी ऑन है। ये फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि अगर आपका मानिए 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो शुरू में ज़्यादा इक्विटी में एलोकेट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे टारगेट डेट पास आती जाएगी, जैसे जैसे निवेश के इनके इन फंड्स की अवधि समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे ये इक्विटी से थोड़ा सेफ डेट में ऑटोमेटिकली आपका पैसा मूव करते जाएंगे। तो ये काफ़ी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि जिसमें आपको एसेट रीबैलेंसिंग अपने पोर्टफोलियो की नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली वो फंड हाई रिस्क से थोड़ा मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क की तरफ बढ़ता चलेगा जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अगेन मैं यही कहूंगा कि नए टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो पहला प्रोडक्ट आया है, ये किस तरह निवेश करते हैं, क्या ये आपको अच्छा एक्सपोजर और ओवरऑल टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न देने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं, इनका खर्चा कैसा होता है। हाइब्रिड्स में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि

0: अगेन मैं यही कहूंगा कि नए टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो पहला प्रोडक्ट आया है, ये किस तरह निवेश करते हैं, क्या ये आपको अच्छा एक्सपोजर और ओवरऑल टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न देने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं, इनका खर्चा कैसा होता है। हाइब्रिड्स में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनमें कुछ कॉम्पोनेंट डेट होता है, कुछ इक्विटी होता है, एक मिश्रित ये प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन काफी तौर पर देखा गया है कि इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इक्विटी के नजदीक होता है, इक्विटी के बराबर होता है, तो उस सेंस में ये थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बन सकते हैं। हाँ, टैक्स में जरूर ये टैक्स बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि रीबैलेंसिंग आपके लिए टैक्स फ्री हो जाती है, फंड करता है, आपको नहीं करनी होती। तो कुछ इनके एडवांटेजेस हैं, कुछ शायद इनके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। समय दीजिए इनको, इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए।
1: ऑल राइट, लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, केशव जी, अपना सवाल पूछे। जी
2: तो वहाँ हमारे को एक सजेशन देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं एजेंट के द्वारा, तो हमें क्या सावधानी बरतनी है कि जो एजेंट हमसे जो फंड बताएगा वो किस ढंग के तरीके से हम समझे कि ये सही हमें रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि हमारी एफडी है और एफडी 2 महीने बाद मैच्योर हो जाएगी, तो सही सिचुएशन क्या है कि आपको ये एफडी के बराबर कोई म्यूचुअल फंड है?
0: जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपका शायद कुछ एफडी में निवेश है जो आप म्यूचुअल फंड में करना चाह रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपको सलाह दे रहे हैं कुछ म्यूचुअल फंड में जाने की, वो कैसे आप पता करें कि वो सलाह सही है कि नहीं। तो देखिए, दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको यूलिप से बचना है। काफ़ी बार ये देखा गया है कि जब आप कोई किसी बैंक के थ्रू, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करने जाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड बताकर यूलिप बेच दी जाती है। पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपको यूलिप ना बेची जाए। अगर किसी भी निवेश प्रोडक्ट में आपको ये बताया जाता है कि उसमें कुछ इंश्योरेंस भी आपको साथ में मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि एक निवेश के साथ अगर इंश्योरेंस मिश्रित है तो एक यूलिप प्रोडक्ट है, आप उनसे बचें। पहला तो ये। दूसरा ये कि आप नए इन्वेस्टर हैं, मेरी राय में किसी भी नए इन्वेस्टर को आप सारा अपना पैसा जितना भी आपका एफडी में है उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में ना लगाएं। आप एक छोटी रकम म्यूचुअल फंड्स में, आप मात्र 500 रुपये, 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप एक बहुत छोटी रकम म्यूचुअल फंड में लगाएं, 2-3 महीने उसमें निवेशित रहें, फिर उसको रिडीम करिए, पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आप ये फुल साइकिल करके देखिए, आपको फर्स्ट हैंड थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है। उसके बाद थोड़े बड़ी मात्रा में, थोड़े बड़े अमाउंट का निवेश प्लान करें। और शुरुआती निवेशकों के लिए अगर आपके पास लंबा टाइम होराइजन है तो मेरा ख्याल एक निफ्टी 50 बेस्ड इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा। उसमें सारे ही फंड लगभग एक जैसे होते हैं, फंड का चुनाव करना बहुत आसान होता है। किसी भी निफ्टी 50 फंड में एक छोटी रकम से शुरुआत करिए, उसमें कुछ 2-4 महीने बने रहिए, उसको देखिए, उसको ट्रैक करिए और उसमें से पैसा रिडीम भी करिए। जब आप ये फुल साइकिल कर लेंगे, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बड़ा निवेश करने के लिए।
3: जी, और हम लौटे अपने सवाल पर कि सेक्टर्स हैं तो क्यों ना हम उनको भी एक्सप्लोर करें।
0: जी, तो देखिए मेरी राय में आम तौर पर ज़्यादातर निवेशकों को सेक्टर फंड से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी सेक्टर लेंगे आपको पहले ये देखना होगा कि क्या वो सेक्टर का आपका अपना एक्सपोजर उस सेक्टर में आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कितना है। अब जैसे बैंकिंग फंड की आप बात करते हैं तो बैंकिंग फंड के बहुत सारे सेक्टर फंड्स आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स फंड्स भी बैंकिंग के आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना आम तौर पर किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो 25-30% या उससे भी ज़्यादा मात्रा में उनका पैसा बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी लगा होता है। तो अगर आप ये नॉलेज के साथ किसी सेक्टर फंड का चुनाव नहीं करेंगे तो आप बहुत ओवर एक्सपोजर शायद ले लेंगे किसी भी सेक्टर में। तो पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड्स बनाए ही निवेशकों के लिए एक बहुत ही आसान, सुगम, हैंड्स फ्री एक्सपोजर के लिए गए थे। अगर आपको फिर भी किसी सेक्टर पे कोई खास कन्विक्शन है, कुछ खास जानकारी है जिसके बलबूते पर आप उस सेक्टर में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेना ही चाहते हैं तो 5-7%, 10%, उससे ज्यादा मेरे राय में आपको सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।
3: जी,
1: एंड लेट्स हियर व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर वांट्स टू आस्क। मिस्टर रामाकांत, प्लीज पोज योर क्वेश्चन। रामाकांत जी, सवाल पूछे।
4: जी नमस्कार, मैं कोलकाता से रामाकांत सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी,
4: मैंने लास्ट 5-6 महीने में थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया है एमएफ में, ये हमको कितने दिन तक चलाना चाहिए और

0: इससे रिलेटेड इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा कुछ जानकारी दें प्लीज
1: जी। तो पहला सवाल, कितने दिन तक? देखिए, म्यूचुअल फंड्स की कोई निश्चित अवधि के प्रोडक्ट्स नहीं है। आप जब तक इसमें निवेशित रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, आपके पास फुल लिक्विडिटी होती है, आप जब भी पैसा निकालना चाहें आप निकाल भी सकते हैं। तो ये एफडी की तरह कोई फिक्स्ड टेन्योर वाले फंड्स नहीं होते हैं, आपकी मर्जी है, ये आप पे निर्धारित करता है कि आपको कब पैसे की जरूरत है, आप तब इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका लंबे समय का निवेश है, आपने इक्विटी में एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने पैसे की बढ़ोतरी के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो इसमें बने रहिए। कम से कम इक्विटी फंड्स के निवेश को 5-7 साल आपको कम से कम देने होते हैं, जिससे कि उसका कुछ बेनिफिट आपको प्राप्त हो पाए। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक पेड़ लगाने की तरह है, जिसमें आपको कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, नहीं सालों में आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो आप इसमें बने रहिए, और इसकी एनएवी जो आपको मिली होगी उसकी ग्रोथ होती है। आप अगर उसकी एनएवी ट्रैक कर रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे एनएवी बढ़ेगी वो आपका गेन है। तो जब आप बेचेंगे, बड़ी भी एनएवी पे बेचेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका गेन है म्यूचुअल फंड से।
2: जी, अगले कॉलर है भोपाल से, शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: नमस्ते सर।
2: नमस्कार।
3: मेरा अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है डेट फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड में, आईसीआईसीआई के, तो उसमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। क्या आर्बिट्राज फंड कंसिडर किया जाए, या डेट फंड के रिटर्न इतने कम क्यों हुए हैं रिसेंट टाइम्स? बिकॉज एफडी में तो वी हैव टू पे टैक्स और टीडीएस वगैरह एवरी ईयर, एंड डेट फंड में वी आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स अनलेस वी रिडीम। सर दूसरा सवाल है, इफ वी मर्ज टू फ्लेक्सी कैप स्कीम और सिमिलर इक्विटी स्कीम, तो क्या एक मर्ज मतलब एक से निकल के दूसरे में जाए तो क्या रिडेम्पशन माना जाएगा, या ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जिसमें हमें टैक्स ना लगे, हम दो फंड को एक मर्ज कर दे एक ही फंड में, एक ही फंड है उसके, एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिडेम्पशन, और देयर इज नो सच स्कीम एंड वी हैव टू गो वाया रिडेम्पशन स्कीम। थैंक यू।
1: पहला सवाल आपका शॉर्ट टर्म फंड को लेकर, देखिए हाल फिलहाल में जैसे ये ग्लोबल सिचुएशन जो रहा है, वॉर का सिचुएशन रहा है, तो यील्ड्स बॉन्ड मार्केट में बढ़ी हैं। जब भी यील्ड बढ़ती हैं तो बॉन्ड फंड्स के रिटर्न गिरते हैं, बॉन्ड्स के रिटर्न गिरते हैं, और उसी लाइन पर बॉन्ड फंड्स के रिटर्न भी गिरते हैं। तो कुछ हाल फिलहाल के 2-3 महीने बॉन्ड फंड्स के लिए मुश्किल रहे हैं, और वही उनके रिटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। फंड का चुनाव आपका अच्छा है, आप बने रह सकते हैं इस फंड में, और आपका एनीवेज शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो एफडी के आसपास या एफडी से शायद थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दे पाए। तो उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आप उम्मीद रखते हैं तो शायद आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा। उतने रिटर्न देने में फंड सक्षम है। हाँ, पिछले 2-3 महीने डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे माहौल बदलेगा तो इनके रिटर्न्स भी बेटर हो सकते हैं। आर्बिट्राज फंड्स आपने कहा, देखिए वही 5-6% रिटर्न की अगर आपकी अभिलाषा है तो आर्बिट्राज फंड्स आपको मेरा ख्याल निराश नहीं करेंगे। डेट फंड से थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन उनका बिगेस्ट एडवांटेज है टैक्स एडवांटेज। डेट फंड्स आपकी स्लैब रेट पर, अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो आपको उतना टैक्स देना पड़ जाता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। आर्बिट्राज फंड्स वहीं इक्विटी के तरह टैक्सेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न आर्बिट्राज फंड्स का थोड़ा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आप उस लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप 6% के दायरे में आसपास अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है आप, तो आर्बिट्राज फंड्स को देख सकते हैं। इक्विटी से फिर आपने तीसरा सवाल पूछा, स्विच आप करना चाहते हैं दूसरे फंड में, तो देखिए टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। आप अगर सेम फंड हाउस के भी दूसरे फंड में आप मूव करते हैं, यहाँ आप सेम फंड के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में मूव करते हैं, तो भी उसे रिडम्पशन एंड बाय ट्रीट किया जाता है और उस पर टैक्स लगेगा। तो देखिए ऐसा कोई भी तिलिस्म नहीं है जिससे आप उससे बच पाएं। तो सोच समझकर आपका इन्वेस्टर के लिए लेसन यही है कि आप सोच समझकर अपने रिडम्पशन प्लान करें, बहुत रेकलेसली एक फंड से दूसरे में जल्दी जल्दी चर्न ना करें।
4: और अमित जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, सवाल पूछें।
5: थैंक यू सर। सर दो सवाल थे कि मल्टी एसेट फंड और मल्टी कैप फंड में क्या फर्क है, और लिक्विड फंड और ओवरनाइट में क्या डिफरेंस हो, ये जानना था। मैं फोन से आपका आंसर सुनूंगा। थैंक यू
1: जी। योर फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कैप और मल्टी एसेट, फर्क यह है कि मल्टी एसेट फंड्स एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड हैं। इनमें इनके मैंडेट में इन्हें कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है। टिपिकली इन फंड्स में देखा गया है कि इक्विटी, डेट और गोल्ड या सिल्वर, और कुछ फंड्स थोड़ा सा रीट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी एसेट फंड्स में मिलता है। अब इस कैटेगरी के अलग अलग फंड्स काफ़ी अलग अलग तरीके से मैनेज होते हैं, तो ये बहुत कंपेरेबल

0: एक दूसरे से शायद नहीं होते, कोई इक्विटी में बहुत ज्यादा रखता है, कोई इक्विटी में बहुत कम रखता है, तो डिफरेंट फंड्स कैन हैव अ वेरी डिफरेंट एसेट एलोकेशन दैट दे फॉलो, बट द ब्रॉड प्रिमाइस इज एज पर द रेगुलेटरी मैंडेट दे हैव टू इन्वेस्ट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस, सो दैट इज मल्टी एसेट फॉर यू. मल्टी कैप फंड्स आर प्योर इक्विटी फंड्स विच इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल, and each of these three market cap segments should have at least 25% each. That's the main difference between multi-cap and multi-asset.
1: जी, अगले कॉलर है दिल्ली से राजीव, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
2: मार्केट मंत्रा जी, जैसे मेरे को SIP करनी है, तो मैं PSE इक्विटी फंड मेरे लिए ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि स्मॉल कैप जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सके?
0: देखिए, अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा दोनों से ही बचें, PSU और स्मॉल कैप. आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड का चुनाव करें और उससे शुरुआत करें, क्योंकि बाकी दोनों काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हाई रिस्क हो सकते हैं. तो शुरुआती इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन कैटेगरीज में से कोई एक या दो फंड्स का चुनाव करें और उसमें अपना SIP शुरू करें.
3: और BT पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पुणे से, सवाल पूछें.
4: हाँ, गुड इवनिंग मैम.
3: गुड इवनिंग.
4: मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने बात की थी कि यूलिप में ना करे, यूलिप लिंक्ड जो इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी रहता है इन्वेस्टमेंट, और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड, और यूलिप में बताया जाता है कि उसमें टैक्स फ्री इनकम रहता है और एडिशनल उसमें इंश्योरेंस भी रहता है, तो कौन सा बेनिफिशियल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे या यूलिप लिंक्ड जो रहता है प्लान उसमें इन्वेस्ट करे?
0: देखिए, मेरी राय में जैसे मैंने पहले कहा था, आप यूलिप से बचें. यूलिप्स एक क्योंकि वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, तो नेट रिजल्ट ये होता है कि ना आपको इंश्योरेंस पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है और ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट एक एफिशिएंट तरीके से काम करती है. थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन के कमीशन उनमें ज़्यादा होते हैं, शुरू के ही एक दो साल में काफ़ी कमीशन में आपका पैसा कट जाता है, तो कंपाउंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए जितना पैसा बचता है, तो आपको शुरू में ही जो सेटबैक लगता है, योर रिटर्न्स आर ऑलवेज कैचिंग अप. तो बेस्ट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स के लिए यही रहती है कि अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, अपनी इंश्योरेंस नीड के लिए एक सस्ता साधारण टर्म प्लान लें जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में समय शोर्ड लीजिए और कम प्रीमियम में, और बचा हुआ पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स या बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में निवेश करें.
1: जी, और कीमती धातुओं के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मई के बाद पहली बार साप्ताहिक बढ़त देखी गई. MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.2% की बढ़त हुई और ये 1,47,378 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% बढ़कर 2,37,410 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. और FPI का हाल ये रहा कि जुलाई के 3 शुरुआती कारोबारी सत्रों में लिवाली का रुख बनाए रखा FPIs ने, और इस महीने अब तक उन्होंने 708 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे हैं. जून में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 49,340 करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन अब ये रुख उलटता हुआ दिखाई दे रहा है. लेकिन भारतीय ऋण बाजार में FPI ने पिछले महीने काफी दिलचस्पी दिखाई थी. जनरल लिमिट के तहत उन्होंने 30,620 करोड़ रुपए, FAR के जरिए 21,652 करोड़ रुपए और VRR के तहत 3,246 करोड़ रुपए का निवेश किया. और आशुतोष, आज वक्त इतना ही है सवालों के जवाब देने के लिए और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी, धन्यवाद.
3: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त. इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स एंड FPIs रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीज अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स. एंड दैट्स ऑल इन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र. सी यू टुमारो. अंटिल देन, गुड बाय.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
7: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.

0: बताएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जल संबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स के प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तनाव बढ़ गया है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर जारी दमनकारी कार्रवाई के बीच हुई है। पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां जूनियर डॉक्टर लंबित वेतन, बेहतर सुरक्षा और अस्पताल की सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है।

0: हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
2: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग-अलग अभियानों में कोडीन आधारित 1 कफ सिरप की 1 लाख से अधिक शीशियां जब्त की हैं। DRI ने अगरतला में रेलवे सुरक्षा बल और असम राइफल्स की सहायता से अभियान चलाकर 55,000 से अधिक शीशियों की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अन्य अभियान में अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी स्थित एक गोदाम की तलाशी में कोडीन आधारित कफ सिरप की 56,000 से अधिक शीशियां बरामद की। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह पोत यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और सेल फोर्थ 250 समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। हडसन नदी पर आयोजित परेड ऑफ सेल के दौरान 3 मस्तूलों वाले इस प्रतिष्ठित पोत ने गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया। INS सुदर्शनी की यह यात्रा 10 महीने के ट्रांसोनिक अभियान लोकायन 2026 का हिस्सा है। यह समुद्री सहयोग को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का निर्माण करने और सहयोगी नौसेनाओं के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations.

0: நேர்களே, இந்த அலைவரிசை இன்னும் சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में

सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में कल डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। कल रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज नुआन पहलगाम बेस कैंप का दौरा किया। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के निर्धारित 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। फोएबे लिचफील्ड ने 48 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: கவரிமான் திரைப்படத்திலிருந்து கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। मंत्रालय ने सभी लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के निर्धारित 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some more parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. While scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said a new chapter is being written in Shivpuri's history yesterday.
2: Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly and

தீங்கிட்டதா.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न

0: पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में ट्रस्ट को प्राप्त दान की गिनती की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहले यह बैठक आज दोपहर करीब 3 बजे मडराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब यह बैठक राम मंदिर परिसर में होगी। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some more parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli today. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said, a new chapter is being written in Shivpuri's history yesterday.
2: Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia.
1: Mr. Scindia said the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self

நிறைவாக பஜன்.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है. पहले चरण में वे आज 3 दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचेंगे. ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की 4थी यात्रा होगी. मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी. प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे. विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की. यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की. डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे. मंत्रालय ने बताया कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अंतर्गत इस समारोह का आयोजन किया गया है. इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे. इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टीसू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के 3रे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है. अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर को मिले धन की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है. ट्रस्ट की बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी. असम मंत्रिमंडल ने आज राज्य विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहले आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दे दी है. गुवाहाटी में मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है. इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है. संस्कृति मंत्रालय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार की सहयोग

से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा मंत्रालय ने पिछले वर्ष की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चौल के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विभाग ने आज मुंबई समेत कई राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।